0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: RM2 Radio Musti.
1: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं.
0: वेलकम टू RM2
2: Radio Musti.
3: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
3: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
3: सेंटर
2: 99.4
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
0: Radio Musti.

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गणपति बप्पा मोरिया। सुबह की शुरुआत भगवान गणेश के आशीर्वाद से करते हैं। आज है गणेश चतुर्थी और सबसे पहले दिल से हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जो भी लिसनर हमें इस वक्त सुन रहे हैं, मॉरिशस से हो या दुनिया के किसी भी कोने से, आप सबका RM2 रेडियो मस्ती पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम और ये है आप ही का प्रोग्राम राइज एंड शाइन। आज की ये सुबह को बप्पा के आशीर्वाद पुराने गानों की मिठास के साथ इसे खूबसूरत और बनाते हैं। बप्पा आप सबके घर में सुख समृद्धि शांति खुशियां लेकर आए। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। हम तो यही कहेंगे RM2 आप सबका स्वागत करता है। दिल से इंजॉय कीजिए अपने गाने और इस सुबह को बनाए बहुत खूबसूरत।
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पाँच बजकर तेईस मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गाना, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। ये सच बात है, जिसको जिससे प्यार होता है और उसके पास दो मिनट हो और वो दो मिनट उनके साथ बैठ जाए या उनके साथ दो पल की बात कर ले, तो एहसास होता है कि ना जाने टाइम कहाँ निकल गया, ना जाने कितने घंटे गुजर जाते हैं उसी इंसान के पास बैठे, और ऐसे लगता है अरे अभी तो दो मिनट ही हुए थे आपके साथ बैठे हुए। तो यही होता है प्यार का एक सुरूर और प्यार की कुछ बातें। तो चलिए, बहुत सारे गाने लेकर हम आए हैं, अगर आपको भी कोई फरमाइश करनी है आप कर सकते हैं 5499124 पर, जहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत मॉर्निंग आवर के गाने चल रहे हैं। पुराने तो चलेंगे, उसके बाद चलेंगे नए, पर हम आपको इतना ही कहते हैं। आप सबके जिनके भी मैसेजेस मिल रहे हैं हम थोड़ी देर में सबके एक एक करके पढ़ेंगे, पर अगर आपको भी अभी भी कुछ मैसेज भेजने हैं तो आप भेज दीजिए 5499124।

0: 9912949 पर, और मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पुराने गानों की कुछ अलग ही कहानी होती है, जितने सुनते जाते हैं उतना ही दिल करता है और गाने बजते रहें। और यही तो प्यार है हमारा रेडियो के साथ और बॉलीवुड के साथ और साथ में इन पुराने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें एहसास करना सिखाया, जिन्होंने हमें बहुत सारी तरह की वैरायटी ऑफ क्लोथ्स दिए, डिज़ाइनिंग दी, जहाँ पे कहते हैं ना कि जैसे दिल को एक खुशी मिलती है इनको सुनने के बाद, इनको देखने के बाद, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, उनकी कुछ अलग ही बात होती है। तो चलिए भाई, हम दो तीन मैसेजेस साथ साथ ले लेते हैं। जैशन जी साथ दे रहे हैं और सभी साज हॉस्पिटल से जितने भी उनका स्टाफ है उनके साथ सभी को मिलकर कह रहे हैं हैप्पी गणेश चतुर्थी। जैशन, टिम्बा, दानो, उम्रियान, जीवन, आकाश, श्रवण, मेविन, सब के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड लिखा है और कह रहे हैं बस आपका दिन अच्छा हो और हम यहाँ पर ख्याल रखें अपने पेशेंट्स का। क्या बात है, थैंक यू सो मच, ऐसे ही ध्यान रखते रहिए। साथ में मालिनी जी साथ दे रही हैं, डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लोवेशा एंड आपादू पूरी फैमिली और सभी को विश कर रही हैं गुड मॉर्निंग। सुहा बिहारी जी साथ दे रही हैं और अपने परिवार के साथ सभी को बेस्ट विशेस दे रही हैं पूरे दिन के लिए। ललित जी साथ दे रहे हैं और आज उनकी वाइफ का बर्थडे है।

0: तो वो सभी को कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी वाइफ इस समय ये प्रोग्राम सुन रही है इंडिया से, और मैं तो यही कहता हूँ कि बस तुम मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा हो, हमेशा मेरे साथ रहो। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ शेयर किया और आप यूएसए से साथ देते हैं एवरीडे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश शर्मा साजदा जी साथ दे रहे हैं और अपने परिवार को और अपने स्पेशली अपने बेटे को बहुत सारी बेस्ट विशेज दे रहे हैं और कह रहे हैं जो जो बच्चों की एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं प्लीज़ गणपति पप्पा से इतना कहना कि थोड़ा सा अच्छे से सब पढ़ाई करें, और उनका बेटा निशाल भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, और हम भी सभी को कहेंगे भाई अपना ख्याल रखो और अपनी पढ़ाई पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस रहोगे तो एग्ज़ाम में कोई टेंशन नहीं आएगी। चलिए जी, गानों का सिलसिला यहीं पर चल रहा है साथ साथ, और अभी हम आप ही को कहेंगे ये जो प्रोग्राम है इसमें अगर आपको भी कोई मैसेज करना है किसी अपने के खास के लिए और स्पेशली कोई बर्थडे विशेज है तो जरूर भेजिए 5499124 पर।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Masti.
1: मैं हूँ आपके साथ पूनम। आप सभी को गणेश चतुर्थी की प्यारी सुबह की शुरुआत करते हैं। खुशी, अच्छी सोच और अपनों की केयर के साथ गणपति बप्पा का आशीर्वाद साथ रहे आपके और दिन आपका मंगलमय रहे। चलिए जानते हैं राशि फल। सबसे पहले शुरू करते हैं
2: एरीज मेष राशि।
1: आज घर में खुशी का माहौल आपको एनर्जी देगा। काम में कोई अच्छी शुरुआत करने का मन बनेगा। परिवार के साथ त्योहार के कुछ अच्छे पल जरूर बिताइएगा। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 5।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज छोटी छोटी खुशियां दिल को खूब भाएंगी। पैसों से जुड़ी प्लानिंग समझदारी से आगे बढ़िए। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना मत भूलिए। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपकी बातों में खुशी और अपनापन रहेगा। दोस्तों या रिश्तेदारों से अच्छी बातचीत हो सकती है। किसी को शुभकामनाएं देकर उसका दिन बहुत अच्छा बनाएं और आपको भी जिनकी शुभकामनाएं मिले उनको रिप्लाई जरूर दीजिएगा। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 3।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज परिवार के साथ बिताया वक्त खास लगेगा। घर की छोटी जिम्मेदारियां मिलकर पूरी कीजिए। किसी अपने की केयर आपको भी खुशी देगी। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों अच्छे रहेंगे। काम में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। खुशी मिले तो उसे दूसरों के साथ जरूर बांटिएगा। लकी कलर बनेगा आज आपका ऑरेंज, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज प्लानिंग के साथ दिन बहुत आसानी से चलेगा। स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ त्योहार भी इंजॉय कीजिए। थोड़ा काम थोड़ा आराम दोनों साथ रखिएगा। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 4।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज रिश्तों में प्यार और मिठास बनी रहेगी। किसी अपने से मिली प्यारी सी बातचीत आपका मूड बना सकती है। पुरानी नाराजगी छोड़कर खुशियों को जगा दीजिए। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज किसी रुके काम को आगे बढ़ाने का मन बनेगा। आपकी समझदारी कोई मुश्किल बात आसान करेगी। खुद पर भरोसा रखिए और दिन खुलकर एंजॉय कीजिए। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज घर से बाहर भी फेस्टिव मूड बना रहेगा। दोस्तों या परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। मस्ती के साथ थोड़ा आराम भी कीजिएगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इतना ही कहेंगे कि आप पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। त्योहार के बाद जैसे ही फिनिश होता है आपको कंसंट्रेट करना है सिर्फ अपनी पढ़ाई पर। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज आपकी मेहनत के साथ किस्मत भी मुस्कुराकर आपका साथ देने वाली है। घर में किसी अच्छी बातचीत की चर्चा हो सकती है। हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता आए या आप किसी को कुछ बता सकें कि आप किसी को पसंद करते हैं। काम के बीच अपनों का समय ज़रूर निकालिए। उनके साथ उठिए बैठिए, थोड़ा सा घूमने जाइए। ये आपके लिए आज आपका मूड बना सकता है और अगला एक हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 5।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज आपका कोई नया आइडिया लोगों को पसंद आ सकता है। मिलजुल कर किया काम ज़्यादा खुशी देगा। किसी की मदद करके त्योहार को भी खास बनाइए। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 6।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज मन में शांति और चेहरे पर खुशी बनी रहेगी। परिवार से मिला प्यार आपको और पॉजिटिव रखेगा। अपने दिल को कोई छोटी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 3। तो दोस्तों आज गणपति बप्पा से खुशियां मांगिए, अपनी खुशियों दूसरों के साथ बांटिए। मैं थी आपके साथ पूनम और सभी को हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
0: Radio Musti.

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से. विधिमा आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी सुनने वालों को नमस्कार. भव्य रूप से कल गणेश चतुर्थी मनाई गई और आज विसर्जन विधि की बारी है. गणेश विसर्जन हमें वैराग्य का पाठ पढ़ाता है. जिस प्रकार मिट्टी की मूर्ति जल में घुल जाती है, उसी प्रकार भौतिक संसार की हर नश्वर चीज अंततः सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाती है. वाशरी में गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने कल भाग लिया. इस अवसर पर उन्होंने आपसी भाईचारे, धर्मों के सम्मान, देशभक्ति और दीर्घकालिक विजन के महत्व पर जोर दिया. वहीं फेडरेशन के अध्यक्ष ने मुक्का में महाराष्ट्र भवन के पास पार्किंग निर्माण के लिए लीज पर भूमि देने पर सरकार का आभार व्यक्त किया. मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे तक जारी रहेगी. प्रवाह रेखा के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. मछुआरों, नाविकों और आम जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में और समुद्र तटों पर न जाएं. बॉम्बो अदालत में सुनवाई के दौरान गुलशन गोविंद ने 47 दिन की हिरासत का हवाला देते हुए आजसू से अपना बयान दर्ज करने की मांग की. सुनवाई में वकील हुबेन मोहंगा पिले ने सौजन जिनारेन से एक रिनियन दस्तावेज और गुलशन गोविंद की लोमोन में उपस्थिति को लेकर पूछताछ की, जिसे वकील ने चचेरे भाई होने के नाते अप्रमाणित बताया. मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है. कंसेंट्रिक्स के 303 प्रभावित कर्मचारियों के मुआवजे के पैकेज पर चर्चा के लिए बुधवार को श्रम मंत्री रिजाउद्दीन और प्रबंधन के बीच बैठक होगी. यदि आपसी सहमति नहीं बनी तो मामला रिडंडेंसी बोर्ड के पास जा सकता है, जबकि कंपनी बंद होने की अस्थायी तिथि 20 नवंबर तय है. और विदेश में हुती लड़ाकों के सऊदी अरब के वायुसेना अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले से तेल आपूर्ति बाधित होने और कीमतें बढ़ने के कारण अरब देशों की ईरान के साथ होने वाली बैठक स्थगित हो गई है. और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल. मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे तक जारी रहेगी. मस्कोरिंस के दक्षिण पश्चिम पर पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवा की लहर बह रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और सेंट्रल प्लेटो तथा हवाई ढलानों पर रह रहकर बारिश होगी. अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि तटवर्ती इलाकों पर अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. रात के दौरान ऊंचाइयों पर हल्की बरसात होगी. अन्य इलाकों पर मौसम सुहाना रहेगा. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और अन्य इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. ये मांग की जाती है कि विपरीत दिशा में हवा बहने के कारण ऊंचाई पर काम करते समय और रास्ते पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें. प्रवाह रेखा के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. इन लहरों के कारण विशेष रूप से उच्च ज्वार के समय निचले तटीय इलाकों में तटीय बाढ़ आ सकती है. मछुआरों, नाविकों और आम जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में और समुद्र तटों पर न जाएं. सूर्योदय 6:06 पर और आज शाम 6:04 पर सूरज ढल जाएगा. तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपसे मुलाकात होगी 6:30 बजे. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:12 हो चुके हैं दोस्तों, हम 5 बजे से सुबह से आपके साथ जुड़े हुए हैं और कुछ लोग हो सकता है अभी बस ट्यून इन किए हों, तो हम तो आपको बता दें क्योंकि हम 5 बजे से आपके साथ पुराने गानों का सिलसिला शुरू कर रखा है। कई गाने हमारी पसंद के हैं, कई गाने आप सबकी पसंद के हैं, हम तो एक एक करके चला रहे हैं। पर जो ये मौसम है थोड़ा सा कहते ना हल्का फुल्का हिल जाता है, और कहते ना कल सुबह तक तो मतलब धूप भी निकली हुई थी और अच्छा मौसम था, और फिर अचानक से शाम आते आते ठंडा माहौल हो गया, बारिश आनी शुरू हो गई, और जो इस समय जो अभी भी बाहर शायद बारिश हल्की हल्की कहीं कहीं पे है, तो हम यही कहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, थोड़े से वार्म क्लोथ्स पहन के रखिए। अगर ऑफिस जाने लगे हैं तो तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा, क्योंकि बारिश और ठंडा मौसम थोड़ा सा सबके हेल्थ को थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम भी आपको कहेंगे अपना ख्याल रखिए। ये तो होना ही है, पर सबसे पहले उससे पहले हम आप सभी को विश करना चाहेंगे आज गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि प्यारा सा दिन है और गणेश बप्पा आ चुके हैं सबके घरों में। जहाँ पे पूजा पाठ चल रही होगी, कहते ना क्लीनिंग चल रही होगी, सारे तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आज उनका विसर्जन का भी दिन है। देखिए कितने एक दो दिन ही तो आते हैं गणपति बप्पा, फिर उसके बाद फटाफट से चले जाते हैं, क्या करें। यही तो अभी जैसे बताया गया न्यूज़ में कि विराग का भी एक समय होता है, और ये जो समय है इस समय बप्पा का भेजने का भी समय शुरू हो रहा है, तो हमारे घर में थोड़ी सी खुशी का माहौल हो जाता है, थोड़ी सी उदासी का माहौल हो जाता है, पर फिर भी इस मोमेंट को आपको जीना है। उनकी जो भी जिस तरीके से आपकी इच्छाएं हैं उसको मांगिए, पर मैं तो कहती हूँ बड़ी लिस्ट मत लेके जाइएगा, बस सतबुद्धि मांगिएगा, हंसी मांगिएगा, मुस्कुराहट मांगिएगा। आप सभी के लिए हम तो ये कहेंगे गणपति बप्पा मोरिया।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: छह बजकर 27 मिनट हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन में RM2 रेडियो मस्ती के साथ में। इस समय दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। हेमा जी साथ दे रही हैं, केदू एंड तुकाराम फैमिली, राहू जी एंड मराठी फैमिली को विश कर रही हैं और सभी को बोल रही हैं हैप्पी गणेश चतुर्थी। लंदन से ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए बेस्ट विशेज आई हैं। किस्ना एडिसन दिया अपादू एंड ओजोल गोइदन जी की तरफ से और सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश कर रहे हैं और सभी को कह रहे हैं सबका दिन बहुत अच्छा जाए। अजय विजय के लिए स्पेशल सैम्पियर से विशेस हैं और सभी को कह रहे हैं हैप्पी गणेश चतुर्थी। महीन भाई साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। राजन दाबी अपने बेटे रविश एंड रितेश के साथ इस समय जुड़ी हुई हैं इटली से और RM2 रेडियो मस्ती को सुन रही हैं और कह रही हैं एहसास ही नहीं होता कि मैं मॉरिशस में नहीं हूँ। मुझे तो लगता है इटली में भी आके कि मॉरिशस मेरे दिल में ही बसता है। क्या बात है, थैंक यू। अपने दिल में हमारे RM2 को भी रखिए और अपने पूरे मॉरिशस को भी रखिए। रेखा जी साथ दे रही हैं और इस पूरे पावन अवसर पर सभी को विश कर रही हैं और कह रही हैं गणेश ने जन्म ले लिया पार्वती से, अब हमारा समय आ गया उनको वापस पार्वती के पास भेजने का। और मेरे बेटे लाडले को मैं तो कहती हूँ बहुत बहुत प्यार। तो मैं तो कहती हूँ सभी को, कई बार गणेश जी को बेटा समझते हैं, कोई उन्हें भाई समझता है, कोई उनको परमात्मा, कोई प्रभु। तो जो भी आपके इच्छाएं हैं, आपके विशेष हैं, वो पूरी करें। धनवेश्वर जी अपनी पत्नी सुनीता जी, रेखा, निशा जी के साथ जुड़े हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच सभी का। और हम थोड़ी देर में जुड़ पाएंगे विस्तार से समाचारों की, और तब तक एक प्यारा सा छोटा सा गाना सुनते हैं आप सबके साथ।

सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। नमस्कार, मंगलवार 15 सितंबर 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भव्य रूप से कल गणेश चतुर्थी मनाई गई और आज विसर्जन विधि की बारी है। गणेश विसर्जन हमें वैराग्य का पाठ पढ़ाता है। जिस प्रकार मिट्टी की मूर्ति जल में घुल जाती है, उसी प्रकार भौतिक संसार की हर नश्वर चीज अंततः सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाती है। वाशिरी में कल गणेश चतुर्थी के राष्ट्र समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने आपसी भाईचारे, धर्मों के सम्मान, देशभक्ति और दीर्घकालिक विजन के महत्व पर जोर दिया। बॉम्बू अदालत में सुनवाई के दौरान गुलशन गोविंद ने 47 दिन की हिरासत का हवाला देते हुए आजसू से अपना बयान दर्ज करने की मांग की। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कंसेंट्रिक्स के 303 प्रभावित कर्मचारियों के मुआवजे के पैकेज पर चर्चा के लिए बुधवार को श्रम मंत्री रिजाउद्दीन और प्रबंधन के बीच बैठक होगी। यदि आपसी सहमति नहीं बनी तो मामला रिडंडेंसी बोर्ड के पास जा सकता है, जबकि कंपनी बंद होने की अस्थायी तिथि 20 नवंबर तय है। और विदेश में हुती लड़ाकों के सऊदी अरब के वायुसेना अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले से तेल आपूर्ति बाधित होने और कीमतें बढ़ने के कारण अरब देशों की ईरान के साथ होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। भगवान गणेश, जिन्हें गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूज्य और पहचाने जाने वाली देवताओं में से एक है। बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता, कला और विज्ञान के संरक्षक तथा बुद्धि और ज्ञान के देवता के रूप में उनकी प्रतिमा में गहरा दार्शनिक अर्थ समाहित है। गणेश जी का प्रत्येक शारीरिक अंग आदर्श आध्यात्मिक और नैतिक जीवन के लिए एक दृश्य रूपक के रूप में कार्य करता है। गणेश जी का पारंपरिक रूप से किसी भी नए उद्यम, अनुष्ठान या यात्रा की शुरुआत में आह्वान किया जाता है, जिन्हें प्रथम पूज्य यानी सबसे पहले पूजने योग्य कहा जाता है। उनकी ये प्रतीकात्मकता भक्तों को याद दिलाती है कि सच्ची सफलता ज्ञान, एकाग्रता, विनम्रता और भावनात्मक दृढ़ता को मिलाने से मिलती है। गणेश जी के प्रतीकों पर विस्तार दे रही है सुमेरा अकबर अली।

0: गणेश भगवान हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक है। किसी भी नए काम या पूजा की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। गणेश भगवान शिव जी और माँ पार्वती के बेटे हैं। उनकी कहानियाँ हमें माता पिता का सम्मान, कर्तव्य, समझदारी और सच्चाई का महत्व समझाती हैं। लंबोदर, एक दंता भगवान, गजानन, सुखहर्ता, दुखहर्ता, विघ्नेश्वर, बप्पा, गणपति, उनके अनेक नाम हैं।
1: सुन पावला नियाले बप्पा, चिनूर मस्त कीला उन्टिया।
0: वे बुद्धि के देवता हैं। जब उन्हें संसार की परिक्रमा करने को कहा गया था, तब उन्होंने अपने माता पिता की ही परिक्रमा की थी, ये कहकर कि वे ही उनके विश्व हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वे अपने भक्तों के जीवन से बाधाओं को दूर करते हैं। उनका सिर हाथी का और शरीर इंसान का है। उनका बड़ा पेट सुख दुख और जीवन की अच्छाइयों बुराइयों को सहने की क्षमता को दर्शाता है। उनके कान बड़े इसलिए हैं क्योंकि वे असंख्य भक्तों की बात सुनते हैं। उनका वाहन मोचक है और उन्हें मोदक प्रिय है। गणेश उत्सव बहुत ही प्रतीकात्मक है, क्योंकि गणेश भगवान जब पधारते हैं तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं। वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनके जीवन में आनंद और समृद्धि लेकर आते हैं। समस्त हिंदू परिवार, विशेषकर मराठी समुदाय के लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।
2: गणेश विसर्जन और उत्तर पूजा जीवंत गणेश चतुर्थी उत्सव का भावनात्मक

0: समापन करते हैं, जहां भगवान गणेश का आगमन घरों और समुदायों में आनंद, भक्ति और उत्सव का उल्लास लाता है, वहीं विसर्जन उनके दिव्य धाम में उनकी अनुष्ठानिक विदाई का प्रतीक है। गणेश विसर्जन वैराग्य का गहरा पाठ सिखाता है। ये भक्तों को याद दिलाता है कि देवता का भौतिक रूप और वास्तव में भौतिक संसार की हर चीज नश्वर है। जिस प्रकार मिट्टी की मूर्ति हानि रहित रूप से वापस पानी में घुल जाती है, उसी तरह व्यक्तिगत आत्मा अंततः सर्वोच्च सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाती है।
1: गणेश चतुर्थी का पर्व समस्त हिंदू परिवार विशेषकर मराठी समुदाय के लिए अति महत्वपूर्ण है। कल उनकी मूर्तियों की स्थापना के बाद आज विसर्जन विधि की जाएगी। गणपति बप्पा मोरिया ऊर्जा वर्षी लौकरिया यानी अगले बरसतु फिर से आ, इसी गुणगान के साथ गणेश भक्त आज मंगल मूर्तियां लेकर घरों, पंडालों और सभाओं से निकलकर जुलूसों में भाग लेंगे और उनके अंतिम गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के प्रधान दनीराव बिवाजी बताते हैं,
2: गणा पूजा से के नापेल उत्तर पूजा
1: सबसे पहले उत्तर पूजा की जाएगी। गणेश भगवान के प्रति आभार प्रकट किया जाएगा कि वे अपना आशीर्वाद देने हमारे यहाँ पधारे हैं। जुलूसों में उनकी मूर्तियों को सबसे नजदीकी नदी या समुन्दर में ले जाएंगे, जहाँ विसर्जन विधि की जाएगी। रास्तों पर आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ रंगों से भरी परंपराओं से भक्तिमय माहौल छाया रहेगा। देश के विभिन्न इलाकों में भले ही अलग अलग समा बंधा होगा, लेकिन भावनाएं समान रहेंगी। जब बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा तो यही कामना की जाती रहेगी कि बप्पा भक्तों के सारे दुख दर्द ले जाए और बदले में सिर्फ खुशियां छोड़ के जाए।
0: वाशेरी में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी वीना राम गुलाम ने कल गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह में भाग लिया। इस समारोह की विशेषता मराठी संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अध्यक्ष श्रीकानंद हिडू ने मुक्का में महाराष्ट्र भवन के पास पार्किंग के निर्माण के लिए फेडरेशन को भूमि लीज पर प्रदान करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के साथ मॉरिशस के सहयोग का भी उल्लेख किया। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अध्यक्ष श्रीकानंद हिडू को सुनते हैं।
3: Salah Lena nous invite tous pour participer dans l'initiative qui est lancée par le Chief Minister Sri Devendra Fernandez, institué BAPPA.org. BAPPA.org, c'est une plateforme que le gouvernement de Maharashtra pour collecter tout bon contenu lors de célébration Ganesh Chaturthi à travers le monde. Nous fiers de dire que la Mauritius Marathi Mandali Federation est parmi les bon premiers qui finissent register le BAPPA.org aujourd'hui. Nous participons pleinement l'initiative ensemble avec le gouvernement de l'Inde pour qu'il nous capable d'amener Ganesh Utsav comme World Heritage à l'UNESCO.
0: समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के आपसी मेलजोल और भाईचारे, धर्मों के सम्मान, देशभक्ति की भावना तथा वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं पर जोर दिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी घोषणा की कि एक दीर्घकालिक दूरदर्शिता यानी विजन होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
4: Au fait, c'est un grand avantage qui nous est là. Sa composante est dans sa culture, est dans sa fête religieuse, et de participer dans une richesse, notre identité nationale. Et moi, toujours dire ça. Toute bonne religion, je partage même valeurs. Valeurs de paix, fraternité, solidarité, respect. Et toute bonne religion dit même quelque chose. Pas faire ou dit au prochain. Ou vous êtes très tout voisin, comment vous êtes content très tout même. Quand un chef, un gouvernement, vous n'avez pas le droit de faire ou lisez, ou dire problème n'a pas existé. Ou vous avez le courage pour prendre la décision qui vous prend. Ou vous avez, comme on dit, vous avez une vision à long terme. Pas que 10 pour aujourd'hui.

0: जिक्र किया और आतसु से अनुरोध किया कि वे उनके मामले को गंभीरता से लें और एक बार और हमेशा के लिए उनका बयान दर्ज करें। रोजिल आतसु के सौजेंद जी नारायण से वकील रूबेन मोहंगा पीले द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन की गई। वकील रेनन के अधिकारियों द्वारा प्राप्त एक दस्तावेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे ताकि ये पता चल सके कि क्या उस दस्तावेज में गुलशन गोविंद का नाम शामिल था। सौजेंद जी नारायण ने स्पष्ट किया कि जाँच को प्रभावित करने से बचाने के लिए वे कुछ भी खुलासा नहीं कर सकते। पुलिसकर्मी ने यह भी बताया कि गांजा की खेप रेनन से रवाना होने वाली थी। उसने 24 घंटे पहले गुलशन गोविंद को रविंद्र चिमाजी के साथ लुमोन में देखा गया था। वकील रूबेन मोहंगा पीले ने कहा कि इसे अपराध साबित करने वाला नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों चचेरे भाई हैं। मामले की सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कंसेंट्रिक्स में अगली बैठक बुधवार को होगी। प्रबंधन श्रम मंत्री रिजाउद्दीन से मुलाकात करेगा जो गतिविधियों को बंद करने के प्रस्तावित निर्णय से प्रभावित 303 कर्मचारियों को दिए जाने वाले मुआवजे के पैकेज के बारे में जानना चाहते हैं। इसके बाद मंत्री आपसी सहमति से समझौता करने के प्रयास में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और नियोक्ता को एक साथ बैठक में बुलाने का इरादा रखते हैं। यदि ये प्रयास असफल रहता है तो ये मामला रिडंडेंसी बोर्ड के पास जा सकता है। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब कंपनी को बंद करने की योजना अस्थायी रूप से 20 नवंबर के लिए निर्धारित है। मंत्री रिजाउद्दीन को सुनते हैं जिनसे बात की शैलिनी अर्बन ने। विवरण सुमेर अकबर अरिका है।
1: हमने कंसेंट्रिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों को बुलाया। बुध को मेरे ही दफ्तर में मुलाकात होगी ताकि हम जान सके कि कंसेंट्रिक्स पूर्व कर्मचारियों को कितना मुआवजा देने का इरादा रखती है। तब हम जायजा लेंगे कि ये पैकेज अच्छा है या नहीं। अगर रकम अच्छी नहीं है तो मेरे मंत्रालय मीडिएटर की हैसियत से बातचीत करेगा। हम एक हल ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कंसेंट्रिक्स लिमिटेड और पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्वीकार्य हो।
2: Trouver une solution qui sera acceptable tant aux employés que à la direction de Concentrix.
0: और 303 प्रभावित नौकरियों से आगे बढ़कर कंसेंट्रिक्स का मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और स्वचालन के सामने मॉरिशस का बीपीओ सेक्टर कैसे प्रतिस्पर्धी बना रह सकता है? उत्तम की अध्यक्षा जेनी चान इसे ऑटोमेटिक डोमिनो इफेक्ट तो नहीं मानती लेकिन इस बंदी को एक कड़े संकेत के रूप में देखती हैं। उनके अनुसार मॉरिशस को उच्च कौशल और गतिविधियों को अधिक वैल्यू एडेड सेवाओं की ओर बदलने की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। उनको सुनते हैं।
3: Chaque entreprise a sa propre réalité, ses propres clients, son propre...
4: हर उद्योग की अलग स्थिति है, अलग ग्राहक हैं, अलग उसूल हैं और मंदी में अलग स्थान है। कंसेंट्रिक्स ने जिन मुश्किलों का उल्लेख किया है उनको मद्देनजर रखना चाहिए, एक चेतावनी के तौर पर कि सेक्टर असल चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे दबाव, काबिलियतों की कमी, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते असर। हमें सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए कि मेडागास्कर, फिलीपींस, भारत वगैरह जैसे मुख्तलिफ देशों के मुकाबले बढ़ रहे हैं।
3: La concurrence de différentes destinations comme Madagascar, les Philippines, l'Inde, etc. Donc intensifie la concurrence aujourd'hui.
0: और विदेश में हुती लड़ाकों ने सऊदी अरब के वायुसेना अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया जिससे कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई और कीमतों में उछाल आया। इस हमले के बाद अरब देशों की ईरान के साथ होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। और अंत में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है जो गुरुवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे तक जारी रहेगी। मस्कोरिंस के दक्षिण पश्चिम पर पाई जा रही जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवा की लहर बह रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और सेंट्रल प्लेटो तथा हवाई ढलानों पर रह रहकर बारिश होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान ऊंचाइयों पर हल्की बरसात होगी, अन्य इलाकों पर मौसम सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। ये मांग की जाती है कि विपरीत दिशा में हवा बहने के कारण ऊंचाई पर काम करते समय और रास्ते पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। प्रवाह

0: रेखा के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इन लहरों के कारण विशेष रूप से उच्च ज्वार के समय निचले तटीय इलाकों में तटीय बाढ़ आ सकती है। मछुआरों, नाविकों और आम जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में और समुद्र तटों पर न जाएं। सूर्योदय 6:06 पर और आज शाम 6:04 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम कादेर कौन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:51 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। लीन बेटो पांडा मानिकम लीन वाक्वामे विनर्स के पास 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री विजय रामा, जो जयसेन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा रामा के घर ली बैतो पांडा मानिकम लीन वाक्वा से उठाकर थ्वामा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 2 PM। रारोड बारूज पॉम्पलमस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री बिदानन हरदयाल जी तोरा, जो सुखदेव नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ ही आज सुपहर 3 बजे उनके घर रारोड बारूज पॉम्पलमस से उठाकर पॉम्पलमस की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 3 PM। रामफुल लेन गेंदा रोड मेलरोज में 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अंजनी गनू, पैदाइशी नाम सिनानन और जो अंजनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके घर रामफल लेन गेंदा रोड मेलरोज से उठाकर मोताय ब्लॉन्श की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11 AM। तो कोलिन लाहौल कुवां क्यूपिप में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बगमत उकोई, जो चिफिया नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे विकास मंगल के घर तो कोलिन लाहौल कुवां क्यूपिप से उठाकर आलिब्रियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11 AM। रायरोड लिस्पेरेंस त्रिबुशे में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रागामा वेंकटासामी, पैदाइशी नाम वेंकामा और जो जियाना नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके घर रायरोड लिस्पेरेंस त्रिबुशे से उठाकर पीतों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 1:30 PM। निशान अवेन्यू से कॉन्स्टेंस सेंट पियर में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री मोहित गुदो, जो फिस चिपेया नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती निर्मला गुदो के घर निशान अवेन्यू से कॉन्स्टेंस सेंट पियर से उठाकर से कॉन्स्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 1:30 PM। अयोध्या रोड कोटेज में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री शरदानंद दाहू, जो ब्रूसली नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ है आज दिन के 11 बजे उनके बेटे अरविंद दाहू के घर अयोध्या रोड कोटेज से उठाकर बेलमोंगुड लेंस की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11 AM। रायरोड क्लेमेंसिया में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री पुनी देवमती, जो तैयो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुदेवी मोती के घर रायरोड क्लेमेंसिया से उठाकर क्लेमेंसिया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11:30 PM। मेमोसा लेन सैरेमी सेंट्रल फ्लैक में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गंगामा चिदम्बरन, पैदाइशी नाम रामदू और जो सूर्या नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके घर में मुसालेन सैगेमी सेंट्रल फ्लैग से उठाकर लावोंचुया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11:30 PM। क्रिमिशन रोड रिपाई में 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती निर्मला चुखू, पैदाइशी नाम मधो और जो शीतल नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पति देव कुमार सिंह जोखू के घर क्रिमिशन रोड रिपाई से उठाकर रिपाई की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 2 PM। बालिसों रोड रोजबेल में 33 साल के 33 ईयर्स ओल्ड की जनाब अजहर मोहम्मद शामाताली, जो अजहर मोहम्मद सलाद नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा

0: सा आज सुबह 10 बजे उनके पिता नसीर शामताली के घर बालीसों रोड रोजबेल से उठाकर यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। कोमापो नंबर 2 ऑरिएटा वाकवा में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अंबुजम कुमारामासामी पैदाशी नाम कंजामाली और जो दिजीरानी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी माँ राजामाही कंजामाली के घर कोमापो नंबर 2 ऑरिएटा वाकवा से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30। ट्रोबिश रोड थ्रियोली में टेम्यूनिस के पास 28 साल की 28 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रियंका देवी जमन पैदाइशी नाम मोहाबीर और जो जयशीना नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके नाना जीवन मोहाबीर के घर थ्रोबिश रोड थ्रियोली से उठाकर टेम्यूनिस थ्रियोली की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रमिशन टूडे एट नून। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 7:07 हो चुके हैं, आप सभी का स्वागत है आप ही के प्रोग्राम मॉर्निंग बीट में। और सबसे पहले तो हम आप सभी लिसनर्स को, जो चाहे मॉरिशस में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो इस समय और जो हमें सुन रहे हैं, आप सबका दिल से स्वागत है। आज है गणेश चतुर्थी, तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं पूरी MBC की टीम की तरफ से, RM2 रेडियो मस्ती की टीम की तरफ से। बप्पा आपके घर सुख समृद्धि शांति और खुशियाँ लेकर आए। और आगे बढ़ते हैं मॉर्निंग बीट की तरफ, जहाँ पे गणपति बापा के नाम से तो हमने शुरुआत कर दी है, पर हम आपको इतना ही बोलेंगे कि ये दिन जो है ना मॉर्निंग का बहुत ही प्यारा सा लग चुका है। 15 सितंबर मंगलवार का दिन, तो जहाँ पे हम आपको ये बोलते हैं कि अपने दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से कीजिए, वहाँ पे आपको इतना भी बोलते हैं कि अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो ज़रूर भेजिए 5499124 पर। और अगर किसी का स्पेशल बर्थडे है, किसी को सरप्राइज़ देना है, तो ज़रूर कीजिए 5499124 पर।
0: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती।
2: Soso, je sais ce qu'on va faire ce week-end.
3: Être bien sage.
2: Oui, mais aussi sauter sur des trampolines, plonger dans des piscines à boules et dévaler des toboggans lumineux. Parce que du 1er septembre au 31 décembre chez KFC, on reçoit un ticket pour Funtopia ou Gravity Max à Tribeca dans notre Kiki Fun Ville.
3: Ah ben, faudra être sage alors.
4: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
5: Enzo, mo bou arrange mo la case. Enzo, mo bou faire innovation. Sa zoula, c'est côte métrique. Depuis les premiers jusqu'à les 30 septembre, découvrez à 7 surprises, 7 gros promos. L'eau carreau, douche, sanitaire et robinetterie. Septembre promo, 7 promos, côte métrique. Métrique, une enseigne du groupe Karimji.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 7:16 हो चुके हैं और जो अभी अभी उठे हैं और उन्होंने अच्छी सी नींद पूरी की होगी, और क्योंकि भाई पब्लिक हॉलीडे है तो उसमें ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा आराम से रेस्ट करके उठते हैं। और कई जने ऐसे भी हैं कि जो रात को अच्छे से सोए होंगे, पर कई होंगे जिन्होंने बिल्कुल रात को नहीं सो के देखा होगा, क्योंकि वो बप्पा को मना रहे होंगे, ढोल नगाड़ों में डांस कर रहे होंगे। पर क्या करें, रात को थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया था, बारिश थी, तो उस वो जो बारिश होती है ना उस टाइम, बस ऐसा लगता है कि एक तरफ ढोल एक तरफ नगाड़े और ऊपर से डांस। तो मस्ती तो की होगी आप सबने, मुझे पता है थोड़ा सा गला वाला खराब हो गया होगा, तो इसलिए हम कहते हैं थोड़ी सी प्यारी सी मीठी सी चाय बनाओ, इलायची वाली, जिंजर डाल के, और साथ में चिपें खाओ, कुछ खा लो, जो भी आपको लगता है ना मॉर्निंग में, जो भी आपका दिल करता है वो खाइए, क्योंकि मॉर्निंग को अगर आप खूबसूरत बनाएंगे, मुस्कुराते हुए उठेंगे, तो बस आपका दिन भी बहुत अच्छा जाने वाला है। तो हम तो यही कहेंगे आपको भी, अपने आप को थोड़ा सा कवर करके रखिएगा आज पूरा दिन, क्योंकि बाहर मौसम बड़ा ठंडा है, कई जगह पे बारिश है, कहीं पे नहीं है। यहाँ पर तो मोगा में तो थोड़ा सा खुल गया है, पर फिर भी जहाँ पर हो रही है वहाँ पर ध्यान रखिए अपना, और साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद खेलेंगे आपके साथ, थोड़ी सी बातें बातें करेंगे, और साथ में आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, और उसके साथ में आपको बोलेंगे जिनका भी आज बर्थडे। आपको पता है लोलो हाइपर की तरफ से हम हमेशा किसी ना किसी को एक गिफ्ट वाउचर देते हैं, तो अगर आपको भी किसी को सरप्राइज देना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5499-1294 पर। इन्जॉय कीजिए इस गाने को।
0: Morning beat, a good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Avis à tous les amoureux des animaux. 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Et parce qu'il y en a pour toute la famille, profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille.
3: On est tous Winners.
4: Moments that matter with Seacom.
5: जिंदगी बहुत हाली आगे बढ़ेला हमनी के प्रोजे लंबिशन आ सपना जोन हमनी देखी लाचा उस सब खातिर आज लेवल गल फैसला काल जाके बहुत अंतर करी तोहर कौये आगे बढ़ता तोहर लंबिशन भी बड़ा हुआ था और आप अपन भविष्य के बारे में सोचा था वा पर काल जोन लम्हा तोहर खातिर मायना रखी ओकर खातिर एमएससी करे के बारे में सोच ले हवा एगो लाइफ इंश्योरेंस ई खाली तोहर परिवार खातिर सुरक्षा नहीं है बल्कि ई एगो बचत करे के अपन पैसा के फलित करे के और भविष्य खातिर आर्थिक रूप से तैयार होई के तरीका है एगो मकान किने के परियोजना लैका के पढ़ाई एगो सुखद रिटायरमेंट या पूरा शांति से तोहर प्रोजेक्ट के साकार करे के छूट सिकोम के प्रस्तावित जीवन बीमा के संगे आप सब आज ही से जैसन खुशी अपन भविष्य बनाए काहे कि काल के बेहतर पल तोहर आज की तैयारी पर निर्भर बा सिकोम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkom.mu पर जाइह इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
4: इट वाज मोमेंट्स दैट मैटर विद सिकोम
0: RM2
1: रेडियो मस्ती

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 7:30 हो चुके हैं और आप सबका दिल से स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बस हम अभी भी जुड़े हैं आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ, पर हम आपको बोलेंगे आप जुड़ तो गए ना, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बप्पा आप सब पर बहुत कृपा बनाए रखने अपनी। और इस समय हमारे साथ ज्योति जी शातो बनारस से जुड़ी हुई हैं और अपने सभी परिवार और सभी फ्रेंड सर्कल को विश कर रही हैं हैप्पी गणेश चतुर्थी। सेतुल जी साथ दे रही हैं, उनका भी यही सेम मैसेज है। अंशी राधा

0: प्रिया, कुशाल, सीमा, करिश्मा, प्रियंका, याचना, सुधीर ग्लेन पार्क से, राधा चाची, हसमुख चाचा, अज्जी फैमिली ग्लेन पार्क से, कमल, कृष्णा, राहुल, दीप्ति, सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। सारे लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं और स्पेशली आर एम टू रेडियो मस्ती को, सभी आरजेस को, एमबीसी को, आर एम थ्री को, आर एम वन को कह रहे हैं कि हम आप सब हैं तो हमारा दिल लगता है और हम तो यही कह रहे हैं हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं ठीक है। क्या बात है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना बरसाने के लिए। चंद्रिका एंड सुरेखा कथबोन से साथ दे रही हैं और ग्लेन पार्क से सभी मराठी परिवार मंडली और सभी जितने भी मराठी रिश्तेदार हैं सभी के, उन सभी के लिए गणेश चतुर्थी की बहुत सारी विशेज आ रही हैं। गजेंद्र सिंह मिस्टर रवि इंडिया से, वो भी सभी को विश कर रहे हैं और सभी को इतना कह रहे हैं कि भाई आपका दिन बहुत सुपर जाए, तो हम तो कहेंगे आप सबका भी पूरा दिन सुपर जाए। थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, इंजॉय कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा घर में जब सैडनेस आ जाती है क्योंकि पप्पा के जाने का समय होता है तो थोड़ा सा लगता है, पर अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा सा मनाओ, थोड़ी पूजा वूजा करो, थोड़ी गप्पे शप्पे उनके साथ बैठ के मार लो और उसके बाद बोलो कि भाई हैप्पी गणेश चतुर्थी, क्योंकि आज तो उनका बर्थडे है और बर्थडे में एक गिफ्ट तो बनता ही है। तो अगर आपने मोदक भी दे दिया है या उनको सामने नाच के भी दिखा दिया है तो वो खुश हो जाएंगे। इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती
2: एगो लास्योरेंस लावी कौन जी है जे काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे सकबा सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसा कई गो ऑप्शन बा जो बहुत फ्लेक्सिबल बाटी तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में सकबा इन्वेस्टी करे जो निर्भर रही कि आप कितना रिस्क ले सकबा नतीजा एगो ऐसा

0: RM2 Radio Musti.
1: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
2: Sports News.
0: Radio Musti in the mix.
3: सात बजकर 7:40 हो चुके हैं और चलिए जानते हैं हमारे स्पोर्ट्स गुरु अरविंद से स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: गुड

0: मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग आर्म टू लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, लीड्स यूनाइटेड प्रीमियर लीग के टॉप थ्री में आ गया है, जबकि इस सीजन न्यूकासल यूनाइटेड की पहली हार हुई। लीड्स यूनाइटेड 4, न्यूकासल यूनाइटेड 1, और लीड्स यूनाइटेड अभी तक अपराजित अनडिफीटेड हैं। डोमिनिक कैल्वर्ट लेविन का लाजवाब परफॉर्मेंस रहा। फर्स्ट हाफ में एक ओन गोल और कैल्वर्ट लेविन और बोगल का एक एक गोल। लीड्स यूनाइटेड 3-0 से आगे। फिर सेकंड हाफ में दूसरे भाग में ओकाफो का गोल, एक कंसोलेशन गोल न्यूकासल यूनाइटेड का रहा टूरे की ओर से। नए मैनेजर माचियास जेजल की पहली हार है इस सीजन। डोमिनिक कैल्वर्ट लेविन ने कल न्यूकासल यूनाइटेड को खूब परेशान किया। इस सीजन 4 मैचों में 3 गोल स्कोर कर चुका है। इंग्लैंड की नेशनल टीम से बुलावा आने वाला है। स्पेन के ला लीगा में कल रियल बेटिस ने एवेजा कर विलारियल को 2-1 से हराया। इटली के सेरी आ में कोमो 2-1, एएस रोमा ने एवेजा कर टोरिनो को तोड़ा 2-0 से, और इंटर मिलान 5 यूडिनीज़े 3। एएस रोमा और इंटर मिलान के पास 12-12 अंक हैं, 12 पॉइंट्स। कोमो के पास है 10 अंक, लाजियो के पास भी 10 अंक हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी वाले मैनचेस्टर डर्बी में सिटी के गोल को लेकर वा ऑफिशियल को कम से कम एक हफ्ते के लिए आराम करने को कहा गया है। इस वीकेंड के लिए उन्हें कोई प्रीमियर लीग मैच के लिए अपॉइंट नहीं किया गया। प्रोफेशनल रेफरी चीफ रेफरिंग ऑफिसर हावर्ड वेब और मैनेजमेंट टीम ने मैनचेस्टर डर्बी वाली घटना को लेकर यह फैसला लिया। एरर ऑफ जजमेंट की और भुगतना अब होगा, पर नुकसान तो यूनाइटेड को हुआ, मैच हार गए। आज और कल कराबाओ लीग कप के तीसरे राउंड के मैच खेले जाएंगे। लिवरपूल खेलेगा टोटनहम हॉटस्पर के खिलाफ, इप्सविच आर्सेनल, रेडिंग ब्रेंटफोर्ड, पीटरबोरो बर्नले, फिर वेस्ट हैम यूनाइटेड फुलहम। कल के मैच एवर्टन वुल्व्स, फ्लीटवुड टाउन शेफील्ड यूनाइटेड, कोवेंट्री एस्टन विला, मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्राइटन का स्वागत करेगा, और परसों मैनचेस्टर सिटी वर्सेस नॉर्विच सिटी। क्रिकेट, आज दूसरे T20 मैच की बारी है, टीम इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। पहले मैच में भारतीय टीम की आसान जीत हुई थी, सभी मैच दिल्ली में खेले जा रहे हैं। घुड़दौड़ अनसंग हीरो मामले में मैनुअल नूनेस को 3 रेस मीटिंग के लिए सस्पेंड किया गया था और 30,000 जुर्माना। अपील के बाद अब सस्पेंशन 2 हफ्तों का हो गया है, मतलब अगली 2 रेस मीटिंग में मैनुअल नूनेस सवारी नहीं कर पाएगा। और किकबॉक्सिंग में 18 से 27 सितंबर तक इटली में वाको यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप लगने वाले हैं। मॉरिशस से माइल लुइस, वेन पेरिन और जादेन ड्राक वहां भाग लेंगे। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, लीड्स यूनाइटेड प्रीमियर लीग टेबल के तीसरे स्थान पे आ गया है। कल उसने 4-1 से न्यूकासल यूनाइटेड को रफा दफा किया। दैट्स इट, हैव अ ग्रेट डे अहेड, और आप सभी लोगों को गणपति बाप्पा मोरिया।
1: थैंक यू गणपति बाप्पा मोरिया।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: क्या बात है, क्या बात है। ये जो गाना चलता है ना, तो एहसास होता है भैया ढोल ढमाके हमारे आसपास ही रहने चाहिए, क्योंकि जो मॉर्निंग की एनर्जी है ना, इन गानों से बहुत बढ़िया हो जाती है। चलिए, जिस टाइम का सभी को बहुत इंतज़ार होता है, उसका वो इंतज़ार ख़त्म हुआ, पर हम आपको यही बताएंगे कि लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से किसी एक को मिलता है हमेशा बर्थडे के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट वाउचर। पर हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर हमारे वो लिसनर जिनका आज बर्थडे है वो फ़ोन उठा लें, पर अभी हमें है कि या तो वो सोए हैं, क्योंकि भी गणेश चतुर्थी है, बहुत सारे बच्चे जो हैं मस्ती कर रहे हैं, पर फिर भी हम एक बार फिर ट्राई करते हैं कि उनके परिवार से जो विशेज आए हैं उन तक पहुंच जाए, क्योंकि इस समय सिस्टर वंशिका एंड अंशी मयूर को बर्थडे विश कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि भाई एक हमारे घर में गणेशा हमारा बर्थडे बॉय आ गया और एक हमारा मयूर है उसका बर्थडे है, प्लीज़ एक बार उसे उठाकर बर्थडे विश कर दो। पर हम तो करना चाहते हैं मयूर, एक बार फ़ोन तो उठाएं, बस हम क्या करते हैं, चलिए भाई देख लेते हैं, एक बार लास्ट ट्राई करके देखते हैं। हेलो मयूर, आए हैं या नहीं आए, नहीं आए कोई बात नहीं, पर हम तो आपको मयूर बर्थडे विश कर रहे हैं हमारी पूरी आर एम टू रेडियो मस्ती की तरफ से, कि आपका ये बर्थडे बहुत खास जाए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि आपकी सिस्टर्स ने बोला है कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं और बहुत ही खास बच्चे हैं। तो हम भी यही कहेंगे, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी आर एम टू रेडियो मस्ती की तरफ से और लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से। आपको एक गिफ्ट वाउचर मिलता है।

तो गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बप्पा आपका सबका ख्याल रखे, हर खुशी दे और आपको हमेशा, कहते हैं ना, प्यार और मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हमेशा बनी रहे, क्योंकि मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है हंसनी का। मुझे दीजिए इजाज़त मेरी तरफ से बाय और उसकी तरफ से हाय।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
4: Time check, सुबह के 8 बज रहे हैं. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार.
5: भव्य रूप से काल गणेश चतुर्थी मनावल कल और आज विसर्जन विधि के बारी बाटे गणेश विसर्जन हमनी के वैराग्य के पाठ पढ़ावेला जोन प्रकार मिट्टी के मूर्ति जल में घुल जाला उही प्रकार भौतिक संसार के हर नश्वर चीज अंततः सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाला वशरी में गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह में काल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुला और उनकर पत्नी भाग लेलन ये अवसर पर ही वो आपसी भाईचारे धर्म के सम्मान देशभक्ति और दीर्घकालिक विजन के महत्व पर जोर देलन वहीं

0: फेडरेशन के अध्यक्ष मुकामे महाराष्ट्र भवन के पास पार्किंग निर्माण खातिर लीज परिभूमि दे के परी सरकार के आभार व्यक्त करलन। मॉरिशस में ऊंचा लहर उठे की चेतावनी जारी करल गल बाटी। जीबीफे के 17 सितंबर के फजर के 10 बजे ले जारी रही। प्रवाह रेखा के परे समुद्र बहुत ही खराब रही और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंचा लहर उठी। मछुआरा लोग, नाविक लोग और आम जनता के सख्त सलाह दिवल जाता कि वो लोग समुद्र में और समुद्र तट पर ही न जाए की। और इस संबंध में नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट सेंटर से प्रवीण रघु की सुनी रचा।
1: नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर जनता के सूचित करता कि मॉरिशस के मौसम विभाग एगो ऊंची लहर के चेतावनी निकल लेबा जोन गुरुवार के सुबह के 10 बजे तक मॉरिशस में लागू रही और आम जनता तथा भक्तों से सतर्कता बरतने की एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील करता है। आपकी सुरक्षा खातिर जनता और मछुआरे से निवेदन बा कि समुन्द्र में न जाए के और समुन्द्र और समुन्द्र तट के सब गतिविधि से बच के रहे के। जनता और गाड़ी चालों के मांग बा कि होशियार रहे के समुन्द्र के रास्ते पर, जैसे कि माकोंडे, रिविया दे गाले, लाप्रेरी, पेजिकाप और बेलोम। नेशनल कोस्ट गार्ड और फिशरीज के अधिकारी लोग पेट्रोल करत वन सा सभी समुन्द्र तट पर। इमरजेंसी नंबर पुलिस 999 या 148, दमकल विभाग 115, सामी 114।
0: बम्बू अदालत में सुनवाई के दौरान गुलशन गोविंद 47 दिन के हिरासत के हवाला देते हुए आज से अपन बयान दर्ज करे की मांग करता। मामला की अगला सुनवाई 17 सितंबर ले खातिर स्थगित कर देवल कल बाटी। कंसेंट्रिक्स के 303 प्रभावित कामकर वालों के मुआवजा के पैकेज पर चर्चा खातिर बुध के श्रम मंत्री रिजाउद्दीन और प्रबंधन के बीच बैठक हुई। यदि आपसी सहमति नहीं बनी तो मामला रिडंडेंसी बोर्ड के पास जा सकी, जबकि कंपनी बंद हो के अस्थायी तिथि 20 नवंबर तय बाटी। और दूसरे देश के समाचार में हुती लड़ाकू के सऊदी अरब के वायुसेना अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमला से तेल आपूर्ति बाधित हुई की और कीमत बढ़े के कारण अरब देश के ईरान संगे हुई होला बैठक स्थगित हो गलबा। तो देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। पर ध्यान खातिर धन्यवाद, नमस्ते।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: Yes!
1: It's the Winner Broadcast with Winners.
2: On est tous winners.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
3: चलिए विद्यमान से जानते हैं मौसम का हाल. जिन्होंने सुबह सुन लिया उनके लिए तो ठीक है, पर जिन्होंने नहीं सुना और जिनका रह गया उनसे जानते हैं कैसा मौसम का हाल रहेगा.
4: मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है जो गुरुवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे तक जारी रहेगी. मस्कोरिंस के दक्षिण पश्चिम पर पाई जा रही जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवा की लहर बह रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और सेंट्रल प्लेटो तथा हवाई ढलानों पर रह रहकर बारिश होगी. अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस जबकि तटवर्ती इलाकों पर अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. रात के दौरान ऊंचाइयों पर हल्की बरसात होगी. अन्य इलाकों पर मौसम सुहाना रहेगा. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और अन्य इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. ये मांग की जाती है कि विपरीत दिशा में हवा बहने के कारण ऊंचाई पर काम करते समय और रास्ते पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें. प्रवाह रेखा के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. इन लहरों के कारण

0: विशेष रूप से उच्च ज्वार के समय निचले तटीय इलाकों में तटीय बाढ़ आ सकती है। मछुआरों, नाविकों और आम जनता को सख्त सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में और समुद्र तटों पर न जाएं। सूर्योदय 6:06 पर और आज शाम 6:04 पर सूरज ढल जाएगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: Avis à tous les amoureux des animaux. 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Le shampoing antibactérien Royal Pet à 169,95 et 2,7 kg de Pedigree pour chiots Chicken Egg Milk à 689,95. Profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille.
4: On est tous Winners!

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 8:17 मिनट हो गया है. सभी का वेलकम ऑन रेडियो मस्ती. स्पेशल थैंक यू टू पूनम जो यहाँ पर थी टू गिव अस द वेक अप कॉल. वो यहाँ पर थी आज सुबह के वक्त. और अभी जो हमारे भक्तगण है वो बस तैयारियां कर रहे हैं आज गणपति विसर्जन जो होने वाला है. प्रथम पूज्य गणेश जी का आशीर्वाद सदा बना रहे, हर कदम पर सफलता मिले, हर मनोकामना पूर्ण हो, जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का आगमन हो. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. बप्पा आए हैं जी, खुशियां लाए हैं, हर दिल में नई उम्मीद जगाए हैं. गणपति महाराज जी का आशीर्वाद सदा आप पर, आपके परिवारों पर बना रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं. गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं हैं. हमारे पूरे रेडियो टीम की तरफ से आपके परिवारों तक हम लेकर आए हैं ये म्यूजिकल जर्नी, जहां पर हम तय करेंगे आपके साथ. हंसनी आ गई है और सभी को हम विश करना चाहेंगे पायस डे. और इस मंगल माहौल में बिल्कुल प्रार्थनाएं हो रही है. और कल रात भर के लिए जागरण हुआ, पूजा पाठ हुई और झाकरी ग्रुप के साथ काफ़ी मनोरंजन हुआ है गणपति महाराज को प्रसन्न करने के लिए. तो आज भी एक ऐसा दिन है यहाँ पर बप्पा को खुश करने के लिए, बप्पा को प्रसन्न करने के लिए, जहाँ पर वो सब पर आशीष बरसाने वाली है. एक बार फिर से सभी रेडियो टीम की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं हैं. वैसे आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल है. 15th of September वी मार्क द डेट इन रेडियो मस्ती, क्योंकि वन ऑफ आवर टीम जो हमारा आरजे है वो आज अपना बर्थडे मना रही है. यस, शी इज आरजे पूनम. हैप्पी बर्थडे टू यू पूनम जी. यहाँ पर लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू यू. और बेशक आज स्टार्ट उन्होंने किया है श्री गणेश फॉर 15th of September उन्होंने किया है. सो व्हाट अ डे उनके लिए. सो चलिए पूनम जी, यहाँ पर आप आएंगे थोड़ा सा आपके जो फैन फॉलोअर्स है वो भी तो आपको विश करना चाहेंगे हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू.
3: थैंक यू सो मच आप सभी का. ये तो गणपति जी के आशीर्वाद है कि आज उनके दिन पे ही मेरा बर्थडे आया. मुझे अच्छा लग रहा है.
2: सो आज फुल जोश है, फुल एनर्जी है. एंड दैट्स अ ग्रेट यू नो एक ऐसा मौका है जहाँ पर हम सब सेलिब्रेट करने वाले हैं आपके साथ. तो चलिए आई जॉइन माई सेल्फ विद आवर टीम और हम आपको विश कर रहे हैं ऑल द वेरी बेस्ट. आप हमेशा स्वस्थ रहो, अच्छे यू नो अच्छे फॉर्म में आप हमेशा रहो, हंसमुख रहो एज ऑलवेज, जॉली गुड मूड में जैसे आप हमेशा रहती हो, एनर्जी फुल वाला. सो आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो. एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी. और जिस लाइन में हम सब है इसमें आपको हमेशा कामयाबी ही मिले, यू नो.
3: थैंक यू सो मच.
2: एंड आज के लिए क्या प्लान है?
3: आज के लिए कुछ प्लान नहीं है, सिर्फ गणपति बप्पा को देखना और कुछ नहीं करना.
2: क्या बात है. सो चलिए शुभकामनाएं आपके लिए. एंड वंस अगेन पूनम, हम आपको विश कर रहे हैं अ वेरी हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू.
3: थैंक यू डियर, थैंक यू एवरीवन.
2: यहाँ पर हमने सोचा है सिर्फ विश कर रहे हैं, अगर गाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, मस्त हो जाएगा. सो व्हाई नॉट आपके लिए. एंड फॉर ऑल दोज जो आज अपने स्पेशल दिन बना रहे हैं.

FM2 रेडियो मस्ती। सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में। साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट। आप सब जानते ही हैं, लेकिन प्रोसेसर में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है। आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट। और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो। तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसान के स्टोर्स में और थ्वासिसान.mu पर भी। RM2 रेडियो मस्ती।

0: Show. Come on. RM2.
1: Radio Musty.
2: Wishing you all a great morning on Radio Musty. हम सभी का स्वागत तो करेंगे. Wishing everyone a very good morning. यहाँ पर हंसनी का साथ रहने वाला है. Really hope कि सब ठीक है, सब कुछ अच्छा जा रहा है. वैसे कभी कभार ऐसा होता है कि मानने को तैयार नहीं कि जिंदगी कितनी हसीन है, right? ऐसा होता है ना, ये तो हालात पर डिपेंड करता है. लेकिन आज का दिन नई उम्मीद, पॉजिटिव वाइब्स और ढेर सारी खुशियों से भरा हो, यही हमारी गुड विशेस है. आज सुबह जो है ना, एक नया चांस लेकर आता है और खुद को बेटर बनाने का ये चांस जो हम सबको मिला है. सो डू बिलीव इन आवर सेल्फ एंड मेक टुडे काउंट. अगर ये हम करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच जाएंगे. वैसे लाइफ की खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं है, हम तो कहेंगे छोटी छोटी जो पल आते हैं ना, दिल से हम एंजॉय करने वाले हैं उन सभी पलों को जो यहाँ पर बरसने वाले हैं अपनों के साथ. आज इट्स पब्लिक हॉलीडे और कई जो हमारे दोस्त हैं आज घर पर रहेंगे, आज आराम फरमाने का दिन. वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही सोचा है. लेकिन ऐसे में इस हलचल जो मची हुई है कल रात से, प्रिपरेशंस यहाँ पर जारी है, तैयारियाँ हो रही है और आज धूमधाम से हम बप्पा का विसर्जन करने वाले हैं. और कई जो परिवार है इसी साइड पर बढ़ेंगे, नदी नाले पर जो पूजा पाठ होती है वो बस उनके लिए तैयार हो रही है. तो यहाँ पर जो जोश है, जो प्यारा सा माहौल है, उसी में हम रेडियो मस्ती को शामिल करवा रहे हैं टू मेक इट अ बिट मोर स्पेशल. तो यहाँ पर प्लानिंग्स के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे. लेकिन आपने कुछ सोचा है दिन की शुरुआत कैसे आप कर रही हो? अगर शेयर करना चाहेंगे तो दैट विल बी नाइस, दैट विल बी ग्रेट. तो इसके लिए पूरा इंतजाम हमने कर लिया है जी. यहाँ पर करेंगे आप लोगों का इंतजार 54991294 पर फॉर योर मैसेजेस एंड प्यारे से डेडिकेशंस. जैसे कि हमारी आरजे पूनम आज सेलिब्रेट कर रही है अपनी सालगिरह. अगर आपके यहाँ भी कोई खास है और उनको आप विश करना चाहेंगे, सो रेडियो मस्ती इज हियर आपके साथ साथ ही रहने वाले हैं टू मेक दिस 15th of September even more dhamakedar, even more special. So join us and yahan par agar abhi aapne radio on kar liya hai, baatein main to karti jaungi, hansni hai na, yahan par share karungi kuch lovely baatein aapke sath. To milkar dhamakedar gaane hum lekar aayenge only in our morning beat wala show.
0: Morning beat, a good beat for your morning show. James
1: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: And definitely that was one of the best gana to keep us motivated. ऐसे ही अपना हर दिन हमको भरपूर जीना है, हर पल को enjoy करना है, क्योंकि ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती है, right? So my dear friends, कल की tension को छोड़ लीजिए, आज की खुशियों को आप महसूस कर लीजिए और अपना हर दिन मुस्कुराकर जी लीजिए.

Wishing you all a very good morning. It's a warm welcome on Radio Masti. It's full of good energy जो यहाँ पर हम बरसा रहे हैं हमारे गानों के साथ on Radio Masti. This is our morning beat और यहाँ पर आज हम सुनी है आपके साथ to celebrate this 15th of September. So जहाँ पर भी साथ जारी है, keep enjoying the show. Wishing you all a super duper morning.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Wishing you all a very good morning. I check your time as subah ke 9 baje hain. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा के साथ. आपको नमस्कार विधिमा.
4: नमस्कार हंसिनी. सभी सुनने वालों को नमस्कार. भव्य रूप से कल गणेश चतुर्थी मनाई गई और आज विसर्जन विधि की बारी है. गणेश विसर्जन हमें वैराग्य का पाठ पढ़ाता है. जिस प्रकार मिट्टी की मूर्ति जल में घुल जाती है, उसी प्रकार भौतिक संसार की हर नश्वर चीज अंततः सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाती है. वाशिरी में गणेश चतुर्थी के राष्ट्र समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने भाग लिया. इस अवसर पर उन्होंने आपसी भाईचारे, धर्मों के सम्मान, देशभक्ति और दीर्घकालिक विजन के महत्व पर जोर दिया. मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे तक जारी रहेगी. प्रवाह रेखा के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. मछुआरों, नाविकों और आम जनता से मांग की जाती है कि वे समुद्र में और समुद्र तटों पर न जाएं. कंसेंट्रिक्स के 303 प्रभावित कर्मचारियों के मुआवजे के पैकेज पर चर्चा के लिए बुधवार को श्रम मंत्री रेजा उद्दीम और प्रबंधन के बीच बैठक होगी. यदि आपसी सहमति नहीं बनी तो मामला रिडंडेंसी बोर्ड के पास जा सकता है, जबकि कंपनी बंद होने की अस्थायी तिथि

0: 20 नवंबर तय हैं। और विदेश में यमन संघर्ष सोमवार को एक बार फिर भीषण मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान समर्थित हुतियों ने सऊदी अरब के कई शहरों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। इस हमले में 13 लोग घायल हो गए और कम से कम 7 रिहायशी मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM2, Radio Musti.
3: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.
2: RM2
1: Radio Musti.
2: Feel the Musti.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: a good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया 9:07 हुए हैं। सभी का स्वागत ऑन रेडियो मस्ती। और अभी स्पेशल टाइम है, हर घरों में मंदिरों में इस समय गणपति आरती हो रहा है, तो चले इसी में शामिल है आप ही का रेडियो मस्ती। सिद्धि विनायक का आशीष मिले, जीवन में धर्म और समृद्धि का प्रकाश खिले, विघ्नहर्ता हर संकट को हर ले, श्री गणेश की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण रहेगी, हमारी सब कामनाएं है। बप्पा का हुआ है आगमन, आपके जीवन में हो बप्पा की कृपा, सारी बाधाओं का हो अंत, बरसे हर ओर खुशियों की बारिश, आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं है। हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑफकोर्स मंगल कामनाएं है, और बप्पा प्रसन्न होके सब पर आशीष बरसाए, यही हमारी गुड विशेष है फॉर एवरीवन। बाधाएं जो आएंगी वो बस हम ओवरकम कर ले बप्पा के ब्लेसिंग्स के साथ। तो यहाँ पे शुभ दिन है आप सभी लोगों के लिए, शुरू हो गया है, शुरुआत अच्छी हुई है। एंड वैसे हम तो आए हैं सभी के इस पलों को और भी स्पेशल बनाने के लिए, जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। ये जो दिन आया है एकदम मस्त वाला दिन, इट्स पब्लिक हॉलीडे इन मॉरिशस, और जहाँ पर भी हमारे भक्तगण इस समय जुड़े हुए हैं, मे बी यहाँ पर सफर जारी है, आप बढ़ रही हो कुछ प्रिपरेशंस करने के लिए, तो इससे पावन माहौल में वे मस्ती शामिल है यहाँ पर ऑफकोर्स मंगल कामनाओं के साथ। सो जॉइन अस, हंसनी रहने वाला है आप लोगों के साथ। एंड कुछ आप कहने वाले हो ये तो हमें पता है, आपके मैसेजेस जो आएंगे इस घंटे के दौरान हम लेकर आएंगे आपके कुछ मैसेजेस, राइट, जहाँ पर आपने बड़े प्यार के साथ अपने फोटोज भेजे हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर आपने कर ली है हमारे साथ ऑन 5499-1294। सो दिस इज अ स्पेशल म्यूजिकल जर्नी टू सेलिब्रेट 15th of September, टू सेलिब्रेट योर मॉर्निंग टाइम। दिस इज आवर मॉर्निंग बीट।
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musty.
2: 9:21 in the morning और बेशक आपने सही सुना है, सही गाना हम लेकर आए हैं जहां पर लक्स ऑफ कलर्स हम बरसा रहे हैं इसी रंग के साथ आपके जीवन को रंगीन बना रहे हैं आप ही कर रेडियो मस्ती। वैसे आज बहुत बड़ा दिन है, गणेश भगवान जो आए हैं और आज इस पावन पर्व पर भगवान गणेश की आराधना श्रद्धा और उत्साह से जुड़ा खास ये पावन माहौल आया है और विघ्नहर्ता गणपति महाराज की पूजा करने से जीवन की बाधाएं तो दूर होती ही हैं और सुख समृद्धि का मार्ग बिल्कुल

0: होता है उनको याद करते ही जो विघ्न है वो दूर होते हैं घरों में पंडालों में यहां पर मंदिरों में गणपति बप्पा के जय जयकारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बस हो रहा है तो इसी मंगलमय वातावरण में हमारे गुड विशेस हर एक के साथ है जो गणपति महाराज को बस आज उनका विसर्जन करने वाले हैं पूरी रात कल धूमधाम से प्रार्थनाएं हुई और लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स के साथ गुड एनर्जी के साथ हमारे भक्तगण बस बप्पा को प्रसन्न कर रहे थे तो हम चले आए हैं खुशियां बांटने के लिए और मंगल कामनाओं के साथ ही ये जो खास मौका आया है टू शेयर इट ऑन रेडियो मिस्टी तो यहाँ पर हम यही शुभकामनाएं करना चाहेंगे आपकी कृपा से मंगलमय हो जीवन का हर काज वक्रतुंड महाकाय से यही हम बस प्रार्थनाएं करते हैं रिद्धि सिद्धि संग पधारे गणपति महाराज सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो परिवार और गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं हंसनी और पूरी टीम की तरफ से तो चलिए इस पावन माहौल में हमारे मंगल कामनाएं हम लेकर आए हैं हमारे सभी टीम की तरफ से
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी गणपति बाप्पा मोरिया

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर हम लेकर आते हैं ओनली द धमाकेदार बीट टू मेक इट जबरदस्त. और वैसे आज तो एक ऐसा मौका है सेलिब्रेटिंग दिस 15th of September, आज पब्लिक हॉलीडे है और धूमधाम से गणपति महाराज की आराधना हम कर रहे हैं. और आज प्रसन्न होकर बापा जाएंगे वापस, यानी कि विसर्जन जो होने वाला है आज धूमधाम से, यहाँ पर प्रिपरेशन जारी है. तो चलिए, वी हैव गॉट नाउ सम डेडिकेशन ताकि वी गेट द फील ऑफ द एंबियंस जो हो रहा है और भक्ति भाई वातावरण में क्या कुछ हो रहा है. विशिंग एवरीवन पायस गणेश चतुर्थी. वी हैव बीवा परिवार जो जुड़े हुए हैं फ्रॉम बेलेरी वेसेस, एंड वी हैव नचुमन फैमिली फ्रॉम सेंट बेन. स्पेशल विशेस टू लवली वाइफ अचाया, और साथ में है पति सर्वेश जो आए हैं टू विश एवरीवन अ पायस डे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग साथ साथ. कैन यू प्ले द ट्रैक मोरियारे फ्रॉम अ डॉन मूवी. ये तो आएंगे अगर हमारे शो में नहीं तो परी लेकर आएगी नेक्स्ट शो में. एंड ये एक ऐसा मौका है जिससे ये गाना बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है. सो अगर आप जो ये रहेंगे विद रेडियो मस्ती तब जरूर ये गाना हम लेकर आएंगे. हाय, मैं हूँ नीताशा. हेलो जी, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गुड विशेस आपके लिए भी. और हम तो मोदक बना रहे हैं और लड्डू बन गया है, सुबह से काम हो रहा है. एंड रियली हैविंग फन. और हम मंदिर में जाएंगे और ठीक 12 बजे आरती शुरू होगी. तो इससे इसके लिए आप बना रही हो कुछ प्रसाद और मोदक के साथ जो मिठास है ना, वो बस बनी रहे आपके जीवन में और आपके परिवारों के बीच में. यही हमारी मंगल कामनाएं हैं. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फोटोज एज वेल. एंड आई मस्ट से व्हाट लाइक परफेक्ट मोदक बन गया है. शो के बाद आप बैठ सकते हो यहाँ पर टेस्ट, अगर बप्पा टेस्ट करेंगे फर्स्ट, इसके बाद हम. ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द वाइब. और स्विट्जरलैंड चलेंगे, वहाँ पर ना तो मोदक बना है ना तो लड्डू बने हैं, वहाँ पर सीधे बर्फी बनी है. अजी वाह, गणपति महाराज तो एकदम खुश होने वाले हैं आज. अंतेश का हम दिल से वेलकम करना चाहेंगे. गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, और गणपति महाराज आए हैं और सबके विघ्न को दूर करने के लिए. तो यहाँ पर इस खुशहाल माहौल में बिल्कुल हमारी मंगल कामनाएं हर एक के साथ है. मॉरिशस में, देश भर में, जहाँ पर भी हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, आपको पता है रेडियो मस्ती वो काम कर लेता है, दूरियों को बस मिटा लेता है. वी गेट द एंबियंस, वी गेट द फील, और जो भक्ति भाव है वो हम लाने की पूरी कोशिश करते हैं हमारे गानों के जरिए. जो यहाँ पर आप मैसेजेस पहुँचाते हो, जैसे बस आप कुछ लिखते हो टू शेयर द फीलिंग्स, तो ये बहुत प्रेशियस है हम सब आज इसके लिए. स्पेशल थैंक यू टू एवरीवन. तो यहाँ पर बप्पा की गुणगान हम करते रहेंगे और गणपति बप्पा जो है वो सबकी सुनते हैं. तो अगर मन में कोई ऐसी मुराद है जो बस आपने दिल में रखे है, तो आज क्या पता बप्पा आपको सुन रही हैं, तो कह लीजिए आपके मन की मुराद पूरे हो जाएंगे. यही हमारी शुभकामनाएँ हैं.
0: Morning beat, a good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: Fantastic beat of music jo bas hum lekar aate hain only to entertain you for this wonderful day or na sirf aaj ke liye balki 24/7 we bring you only the best. This is Radio Musti and abhi I've got some more dedications. Chalengi Mongu Pamplemus se jahan par Shayan ne humko yaad kiya hai. Namaste beta, kaise ho? Shayan Urgu ka warm welcome on Radio Musti and shubhkamnaen hain aaj ke liye Ganapati Bappa Moriya aapko. और यहाँ पर हर वक्त जो है वो गणेशा आपका बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा आपके दिल में रहता है एंड वो आपकी रक्षा करते हैं हर छोटी सी बात को लेकर वो हमेशा साथ निभाते हैं. गणेशा योर फ्रेंड दैट्स सो स्वीट ऑफ यू शयान फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स. और यहाँ पर जो गाना आप सुनना चाहेंगे ओ माय फ्रेंड गणेशा ये तो हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे राइट हमारे सभी छोटे उस्तादों के लिए जिनके दोस्त हमेशा गणपति महाराज होते हैं. और यहाँ पर वी हैव द मैसेज कमिंग फ्रॉम सुया फ्रॉम कुंगुमा. हेलो जी आपका वेलकम है और पायस गणेश चतुर्थी आपके लिए भी हम लेकर आए हैं मंगल कामनाएं और हैप्पी बर्थडे टू आरजे पूनम. यस आज उनका स्पेशल दिन जो आया है और विशेष कमिंग फ्रॉम सुया बियारी जो कुंगुमा से है एंड जितने भी हमारे भक्तगण आज गणपति विसर्जन में भाग लेने वाले हैं सभी को गणपति बापा मोरिया. भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर बनी रहे हरदम हर कार्य में सफलता मिले जीवन में ना आए कोई हम गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर गुड वाइब्स फ्रॉम आकाश चेतन मनसोकर फ्रॉम बॉम्बू. थैंक यू यहां पर जो आप आए हो परिवारों के लिए लेकर आए हैं शुभकामनाएं. और यहाँ पर विदिशा का साथ है फ्रॉम बस्ट डिफ्लैक एंड शेयरिंग सम लवली फोटोज. और गणपति महाराज इज लुकिंग सो सो क्यूट और आपके घर में आंगन में खुशहाल माहौल है और पान फूल मोदक लड्डू प्रसाद और भजन कीर्तन हो रही है और अभी 9 बजे आरती हुई और अभी आप इंतज़ार कर रही हो 12 बजे एंड यू विल बी शेयरिंग महाप्रसाद as well. तो थैंक यू सो मच विदिशा फॉर शेयरिंग द फील ऑफ गणेश चतुर्थी ऑन Radio Musti. और ये जो पावन माहौल आया है बस हमारी मंगल कामनाएं तो यही है कि शुभ कार्य में कोई बाधा ना आए. अगर आए भी तो गणपति महाराज है ना विघ्न हर्ता तो वो है विनायक वो है लंबोधरा वो है तो सबकी भला वो करेंगे डेफिनेटली. तो यहाँ पर बेस्ट विशेष के साथ विल बी टुगेदर साथ साथ रहेंगे इस म्यूजिकल सफर को तय करेंगे साथ

0: टिल 11 एएम हंसनी का साथ है और आज धूमधाम से बस हम मना रहे हैं आज 15th ऑफ सितंबर से मिलकर चलिए इस सफर को आगे हम बढ़ाते हैं वी हैव गॉट नेक्स्ट गाना और इसी के साथ हम बढ़ेंगे ठीक 10 बजे के समाचारों की ओर
1: मॉर्निंग बीट A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
4: Good morning, aap sabhi ko chakta time. Din ke theek 10 baj chuke hain. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा के साथ. आपको नमस्कार विधिमा.
5: नमस्कार हंसिनी, सभी को नमस्कार. कल रात मिडलैंड्स में एक सड़क दुर्घटना पेश आई. घटना स्थल पर एक महिला की मौत तब हुई जब वाहन एक पेड़ से जा टकराई. वाहन चालक और एक अन्य यात्री घायल हुए हैं. क्यूपिप की पुलिस घटना स्थल पर मौजूद थी. भव्य रूप से कल गणेश चतुर्थी मनाई गई जबकि आज गणपति विसर्जन की विधि संपन्न की जा रही है. गणेश विसर्जन हमें वैराग्य और जीवन की नश्वरता का संदेश देता है. जिस प्रकार मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा जल में विलीन हो जाती है उसी प्रकार भौतिक संसार की हर नश्वर वस्तु अंततः सर्वोच्च चेतना में समा जाती है. वाशिही में आयोजित गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने भाग लिया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आपसी भाईचारे, सभी धर्मों के सम्मान, देशभक्ति और देश के दीर्घकालिक विकास के लिए दूरदर्शी सोच के महत्व पर जोर दिया. वहीं फेडरेशन के अध्यक्ष ने मुका स्थित महाराष्ट्र भवन के पास पार्किंग के निर्माण के लिए सरकार द्वारा लीज पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त किया. मॉरिशस में ऊंची लहरों को लेकर चेतावनी जारी की गई है जो गुरुवार 17 सितंबर को सुबह 10 बजे तक प्रभावी रहेगी. प्रवाह रेखा के बाहर समुद्र की स्थिति बेहद खराब रहने की संभावना है जबकि दक्षिण पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में करीब 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं. मछुआरों, नाविकों और आम जनता को सख्त सलाह दी गई है कि वे समुद्र में जाने और समुद्र तटों के करीब जाने से बचें. कंसेंट्रिक्स के 303

0: प्रभावी कर्मचारियों के मुआवजा पैकेज को लेकर बुधवार को श्रम मंत्री रिजा उद्दीन और कंपनी प्रबंधन के बीच बैठक होगी। यदि बैठक में किसी समझौते पर सहमति नहीं बनती है तो मामला रिडंडेंसी बोर्ड के समक्ष भेजा जा सकता है। इस बीच कंपनी के बंद होने की संभावित तारीख 20 नवंबर तय की गई है। और विदेश में स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड ने लंदन के नियंत्रण से आज़ादी की घोषणा करते हुए एक संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: सेंट जोसेफ स्ट्रीट तेरूज में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती भगन, जो मैडम साधु नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर सेंट जोसेफ स्ट्रीट तेरूज से उठाकर सिपाही भोले वाली दिवैत की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विश्वानी चौधरी, पैदाशी नाम लट्टू और जो संगीता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उनके घर ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर इसी दो रोज की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
2: RM2 Radio Musti. The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427, or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 PM.
3: RM2 Radio Musti. Feel the

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: A good beat for your morning show. From RM2.
1: Radio Musti.
2: मुद्दक की मिठास सब फूलों की खुशबू बप्पा के आगमन से महके हर आरज़ू हर विघ्न बाधा हो आपसे दूर गणेश जी रखे खुशियों से भरपूर गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ रेडियो मस्ती माथे पर हो बप्पा का आशीर्वाद जीवन में बने रहे खुशियों की सौगात हर मुश्किल हो जाए आसान गणपति महाराज गणपति बप्पा रखे सदा आपका आमान और मंगल कामनाओं के साथ बढ़कर रेड मस्ती टीम यहाँ पर शामिल है यही प्रार्थनाएं हम करते हैं दिल से प्रार्थनाएं करते हैं कि जहाँ गणपति बापा का आशीर्वाद होता है वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है बापा आपके जीवन के सभी विघ्न हर लें और हर कदम पर सफलता दें और आपके घर में आपके परिवारों में आपके घर को सुख शांति से भर दें यही मंगल कामनाएं है गणपति बापा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या यहाँ पर हंसनी का साथ है और

0: और बिल्कुल हम तो पहुंच गए हैं इन द थर्ड आवर ऑफ मॉर्निंग बीट जहां पर भी साथ जारी है. इट्स अ प्लेजर टू वेलकम एवरीवन यहां पर साथ निभाते रहिए. और सुबह से वो जोश है, वो गुड एनर्जी वाला माहौल है. इट्स फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स. और हमारे फ्रेंड्स जो बिजी है प्रसाद बना रहे हैं और 12 बजे की आरती में जाएंगे, जैसे कुछ फोटोज हमारे पास आए हैं ऑन रेडियो मस्ती. थैंकिंग यू फॉर द फील ऑफ गणेश चतुर्थी जो आपके यहाँ आप बिता रहे हो, मना रहे हो. और मोदक बनाकर, लड्डू बनाकर, कनौला बनाकर हम इस पावन पर्व को और भी खास बनाते हैं. तो स्पेशलिटी आज में से गणपति महाराज के खास अवसर पर, गणेश चतुर्थी के खास मौके पर हम मोदक ना खाएं, कनौला ना खाएं तो यहाँ पर वी हैव टू. या अगर नहीं खाए हैं सो आज खा लीजिए, ये मौका ऐसा मिला है मिठास को बस शेयर करने के लिए. सो हंसरी है कुछ प्यार भरी बातें शेयर करने के लिए एंड कुछ आपके मैसेजेस भी आएंगे, व्हाई नॉट. जहाँ पर प्यार से कुछ आपने लिखा है ना, अपने फीलिंग्स को बयां करके, अपनों को याद करके. सो वी आर हियर आपके साथ योर म्यूजिकल शो अप टिल 11 हमारे संग जो होने वाला है. अभी के लिए वी हैव कमर्शियल ब्रेक.
1: RM2 रेडियो मस्ती. गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
2: एगो लास्योरेंस लावी कौन ची है जे काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है. पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे सकबा. सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसन कई गो ऑप्शन बा जोन बहुत फ्लेक्सिबल बाटी. तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में सकबा इन्वेस्टी करे, जो निर्भर रही कि आप कितना रिस्क ले सकबा. नतीजा एगो ऐसन लास्योरेंस जोन तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई. सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइया. इमे नियम और शर्त भी लागू बा. सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला.
3: सिकम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट.
4: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास. जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी.
1: RM2
3: रेडियो मस्ती.
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
5: जेम्स
3: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ,
0: आ। अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप ना जाए।

0: रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर बुसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378282। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते। फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
3: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: एमपीसीच्या तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: R.M.2
1: रेडियो मस्ती।
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
3: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू a very pious Ganesh Chaturthi.
0: RM2
1: Radio Musti. RM2
4: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
2: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
5: राइट टाइम हो चला है फॉर फैशन टिप्स ऑन रेडियो मस्ती। वैसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं धूमधाम से गणेश चतुर्थी और रिलेटेड जो आउटफिट होता है ट्रेडिशनल वाला कश्ती। सो रिलेटेड वी हैव सम फैशन टिप्स जो बस आपको और भी ग्लैमरस बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल लुक कश्ती के साथ। अगर

0: आप को चुनना है ब्लाउज तो यू कैन चूज कंट्रास्ट ब्लाउज कश्ते के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट जाता है ट्रेडिशनल ज्वेलरी और चूड़ियाँ आप बिल्कुल पेयर करें सो यू चूज योर कलर जो भी कलर आप बस पहनने वाले हो उन्हीं के साथ आप मैच कर लीजिए अपनी ज्वेलरीज को अपने बैंगल्स को चूड़ियों को एंड मॉडर्न टच जो होता है आप ब्लाउज को थोड़ा सा यू नो फिट कर सकते हो विद क्रॉप टॉप ब्लाउज फिटेड ब्लाउज या स्टाइलिश क्रॉप टॉप ये आप चूज कर सकते हो उन्हीं के साथ काश्ती को जो लुक है वो थोड़ा सा और मॉडर्न लुक देता है हेयर स्टाइल कैसे बालों को बांधना है जी नीट बन के साथ गजरा हाँ गजरा जो आप लगाएंगे तो वाह क्या बात है जो आपका लुक है वो पूरा बदल जाएगा नीट बन के साथ गजरा ट्रेडिशनल और भी एलिगेंट फील देता है सो कुछ आपके एक्सेसरीज के बारे में बात करेंगे झुमके जो नेकलेसेस है वो आप बिल्कुल चूज करें अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ योर काश्ती और जो ट्रेडिशनल चूड़ियाँ होते हैं वो बिल्कुल इंस्टेंटली जो एलिवेट करते हैं लुक को ये तो ऑफ कोर्स जो चमक है आपके ज्वेलरीज में ये निखार आएंगे डेफिनेटली और फुटवेयर अगर आप जाएंगे आज विसर्जन करने के लिए आप बस जुलूसों में जाएंगे झाकरी करेंगे तो यू कैन चूज लाइक इजी वाला फुटवेयर कोल्हापुरी चप्पल्स या सैंडल्स परफेक्ट चॉइस है जो आप पर जाएगा आपकी कश्ती पर और कलर टेप ब्राइट कलर्स को चुने आज हाँ आज तो रंगों का त्यौहार है मिलकर धूमधाम से हम बप्पा का विसर्जन करने वाले हैं सो ब्राइट कलर्स जैसे कि रेड ग्रीन पिंक या फिर येलो जैसे फेस्टिव ओकेजन्स के लिए बिल्कुल ब्यूटीफुल लगते हैं तो आज का स्टाइल मंत्र कश्ती सिर्फ एक आउटफिट नहीं ट्रेडिशनल और कॉन्फिडेंस का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये थे कुछ इजी फैशन टिप्स आपको और भी एलिगेंट और ग्लैमरस बनाने के लिए
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हल्कोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स

0: रेडियो मस्ती
1: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2 रेडियो मस्ती।
3: Find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
0: You're listening to Musty Mornings.
4: I'm a Karina, kise de naal pyaar mundiya tu...
0: Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: ढोल बाजे के साथ बिल्कुल ये जो पावन माहौल है इसी में हमारी शुभकामनाएं हम लेकर आए हैं और गणपति महाराज का आज विसर्जन होने वाला है धूमधाम से. हम बप्पा की आराधना में पूजा पाठ कर रही हैं तो चलिए रेडियो मस्ती इज हियर यहाँ पर गुड वाइब्स को शेयर करने के लिए. एंड अभी आई हैव गॉट सम डेडिकेशंस. श्वेता आई है फ्रॉम मोनाको विशिंग पति हैप्पी गणेश चतुर्थी और साथ में आपकी मामा है सुया डैड लाल देव और बिहारी परिवार है कुंगुमा. वी हैव डॉटर्स रिद्धि सोनाक्षी किड्स अवनी वंश. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू योर क्यूट परिवार. थैंक यू एंड आपके लिए मंगल कामनाएं हैं. आई हंसनी हेलो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन. लवली प्लेलिस्ट है. थैंक यू सो मच मानती फॉर शेयरिंग योर लव. और आप तो सुनना था गजानन वाला गाना बाजीराव मस्तानी से तो ये परी लेकर आएगी अब नेक्स्ट शो में. यहाँ पर जितने भी आपने रिक्वेस्ट भेजे हैं यहाँ पर बिल्कुल हमने कोशिश की है आपके फेवरेट गानों को सुनने के लिए सुनाने के लिए. एंड वी हैव विरोध का गाना जो बहुत ही खूबसूरत था. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज. यहाँ पर वी हैव अनीता जी फ्रॉम फिकॉन फ्लैग. कैसी हो जी. हैप्पी गणेश चतुर्थी आपको भी मंगल कामनाएं हैं सभी टीम के लिए आप लेकर आई हो द बेस्ट ऑफ विशेस. और यहाँ पर है नीतीशा. हाय वेलकम इन द शो. रेडी होप कि ये सब ठीक है. सुबह से कामकाज हो रहा है सुबह से साफ सफाई हो रही है और आपके यहाँ भी बिल्कुल गुड वाइब्स शामिल हो गई है और रेडियो मस्टी इज हियर टू ऐड ऑन सम ग्रेट सॉन्ग्स. और आप तो बना रही हो आज यहाँ पर कनौला तो बन गया है मोदक बन गया है और अभी कुछ लड्डू भी और आप भी जाएंगी प्रेयर्स. आपके घर के पास एक मंदिर है जहाँ पर 12 बजे होने वाला है आरती. गणपति महाराज की आराधना करने वाले हैं सभी भक्तगण तो आप जाएंगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द फोटोज. यहाँ पर रेडियो मस्ती इज आपके इस माहौल को और भी पावन बनाने के लिए. एंड वी गेट द फील ऑफ गणेश चतुर्थी जो आप मना रहे हो आपके यहाँ. तो चलिए यहाँ पर टाइम फॉर मी टू वेव गुड बाय नाउ. थैंक यू सो मच सुबह से इतना सारा प्यार आप लेकर आई हो. तो ढोल बाजे के साथ ही आपको छोड़े जाएंगे इसी उम्मीद के साथ कि आज का दिन बस और भी पावन होने वाला है आप सबके लिए गणपति महाराज के आशीर्वाद से. और एक बार फिर से हंसनी और पूरे टीम के साथ हम और जी पूनम को विश करना चाहेंगे अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे. लॉट्स ऑफ गुड विशेस उनके लिए. तो यहाँ पर परी विल बी हियर थोड़ी देर के बाद लेकर आज का नेक्स्ट शो यानी कि मस्ती मॉर्निंग होने वाला है लेकिन एक अलग स्टाइल में. स्टे विद हर यहाँ पर ऑन रेडियो मस्ती एंड ऑफ कोर्स म्यूजिकल आप बने रहिए. टेक गुड केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
3: Din ke 11 baj chuke hain. है संक्षिप्त समाचार एक बार फिर से विधिमा के साथ आपको नमस्कार
4: नमस्कार हंसिनी सभी को नमस्कार भव्य रूप से कल गणेश चतुर्थी मनाई गई जबकि आज गणपति विसर्जन की विधि संपन्न की जा रही है गणेश विसर्जन हमें वैराग्य और जीवन की नश्वरता का संदेश देता है जिस प्रकार मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा जल में विलीन हो जाती है उसी प्रकार भौतिक संसार की हर नश्वर वस्तु अंततः सर्वोच्च चेतना में समा जाती है वाशिरी में कल आयोजित गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने भाग लिया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आपसी भाईचारे सभी धर्मों के सम्मान देशभक्ति और देश के दीर्घकालिक विकास के लिए दूरदर्शी सोच के महत्व पर जोर दिया कल रात मिडलैंड्स में एक सड़क दुर्घटना पेश आई घटनास्थल पर एक महिला की मौत तब हुई जब वाहन एक पेड़ से जा टकराया वाहन चालक और एक अन्य यात्री घायल हुए हैं मॉरिशस में ऊंची लहरों को लेकर चेतावनी जारी की गई है जो गुरुवार 17 सितंबर की सुबह 10 बजे तक प्रभावी रहेगी मछुआरों नाविकों और आम जनता को सख्त सलाह दी गई है कि वे समुद्र में जाने और समुद्र तटों के करीब जाने से बचें और विदेश में उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में मानसून फिर सक्रिय हो गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए आपके ध्यान के लिए धन्यवाद नमस्कार
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: RM2 Radio Musty.
5: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427 or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.
0: RM2
1: Radio Musty.
0: Feel the Musty.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: So well, it's your Musty Mornings और आज का दिन है खास गणपति बाप्पा मोरया के नाद के साथ. आज तो हर जगह गूंज रही है और आप भी हमारा साथ दे रहे हैं दोस्तों. तो मैं हूं परी आपके साथ. अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर मस्ती मॉर्निंग्स. अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक हम होंगे संग संग विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, आपके दिल को लुभाएंगे. और इस दिन को हम खास बना रहे हैं विद सम वंडरफुल सॉन्ग्स. ऑफ कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विशेज और हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं. योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस, योर गुड विशेज फॉर योर लव्ड वंस रहेगा इंतजार 5499-1294 पर. अभी के लिए इस खास दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं टू ऑल द लिसनर्स.

0: रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी। फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
2: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: सुबह 11:22 दोस्तों, क्या हाल चाल. आई एम श्योर दैट आज तो सबको वो ब्लेसिंग्स फील हो रही होंगी. जैसे हम कहते हैं, बापा जब भी आते हैं खुशियां लेकर आते हैं और जब जाते हैं आंखें नम करके जाते हैं. गणपति बापा मोरिया के नाथ के साथ हम भी यहां पर आप तक गुड विशेस पहुंचा रहे हैं और यही कामना करते हैं कि जो भी आपके विशेस हैं, जो भी सपने हैं, जो भी ख्वाब आपने देखे हैं, वो सब पूरे हो जाएं. अभी के लिए तो मैं हूं परी आपके साथ. एंड जैसे हम कहते हैं कि भाई जब कभी कभार कुछ ऐसे डिवाइन चीज़ें होती है जो कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती है लाइफ में, तो होती है. यहाँ बॉलीवुड में भी ऐसा ही कुछ हुआ है. बात हो रही है फिल्म हनुमान अंश की, जो बनी है महज 2 करोड़ के बजट में, वेरी लेस बजट. और इस फिल्म ने अब इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं एंड 100 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है ये फिल्म. और जैसे हमने कहा कि भाई सब कुछ डिपेंड करता है कि लोगों को फिल्म में क्या पसंद आता है, लोगों को वो फिल्म कितना रीच करती है, और ऐसा ही कुछ हुआ है इस फिल्म के साथ. सो अभी के लिए उसी फिल्म का एक गाना जो है बहुत ही ब्यूटीफुल गाना आप सभी के लिए जो दे रहे हैं साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: 92.2
1: रेडियो मस्ती।
0: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
2: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन

0: to Radio Musti.
1: Fresh Flora Malini Fresh की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं.
0: RM2 Radio Musti.
2: यहाँ पर विशेष तो आप तक पहुंच रही हैं और जैसे हमने कहा कि आज का दिन है खास, जितने भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपकी बेस्ट विशेस आप हम तक पहुंचा सकते हैं 5499-1294 पर. अभी के लिए यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं माला जी, और थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से हमारा साथ दिया. ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए चलते रहेंगे, डेडिकेटिंग दिस वन फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्रेंड्स. साथ ही यहाँ पर स्पेशल विशेज आप पहुँचा रही हैं फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. थैंक यू जी. यहाँ पर निर्मला जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं कि आज बेटा बेटी श्वेता अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, सो स्पेशल विशेज ऑन 15th of September. और चलिए आज का स्पेशल दिन एज वेल, डबल सेलिब्रेशन, सो गुड विशेज टू योर लवली डॉटर श्वेता. विशेज लेकर आए हैं उनके लिए सभी परिवार एंड सभी लव्ड वंस. यहाँ पर अखिलेश आपका भी साथ है और आप भी साथ निभा रहे हैं. ड्राइविंग राइट नाउ एंड लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, सो हो जाइए गाना आपके नाम द वॉइस ऑफ राहत फतेह अली खान. ऑल द लिसनर्स योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

0: And well, this one goes out specially for you, Aparna. Loads of love to you. I am sure that इस वक्त आप भी थोड़ा सा smile कर रही है, तो smile करते रहिए. Equally goes out for Swarna and साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी हमारे listeners जुड़े हुए हैं. चलिए, that's your musty mornings. थोड़ी देर में हम बढ़ने वाले हैं आपके पुराने गानों की ओर in your retro rhythm. साथ दीजिए messages, dedications 54991294 पर. You can find me in the
1: club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check, 12 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा, आपको नमस्कार।
5: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज गणपति विसर्जन की विधि संपन्न की जा रही है। गणेश विसर्जन हमें वैराग्य और जीवन की नश्वरता का संदेश देता है। जिस प्रकार मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा जल में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार भौतिक संसार की हर नश्वर वस्तु अंततः सर्वोच्च चेतना में समा जाती है। वाशिही में आयोजित गणेश चतुर्थी के राष्ट्रीय समारोह में कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने भाग लिया। अवसर पर प्रधानमंत्री ने आपसी भाईचारे, सभी धर्मों के सम्मान, देशभक्ति और देश के दीर्घकालिक विकास के लिए दूरदर्शी सोच के महत्व पर जोर दिया। कंसेंट्रिक्स के 303 प्रभावित कर्मचारियों के मुआवजा पैकेज को लेकर बुधवार को श्रम मंत्री रिजाउद्दीन और कंपनी प्रबंधन के बीच बैठक होगी। यदि बैठक में किसी समझौते पर सहमति नहीं बनती है तो मामला रिडंडेंसी बोर्ड के समक्ष भेजा जा सकता है। इस बीच कंपनी के बंद होने की संभावित तारीख 20 नवंबर तय की गई है। मऊ अदालत में सुनवाई के दौरान गुलशन गोविंद ने 47 दिनों की हिरासत का हवाला देते हुए आजसू से अपना बयान दर्ज करने की मांग की। वकील मोहंगा पिल्ले ने संबंधित दस्तावेज और दावे के को अप्रमाणित बताते हुए उस पर आपत्ति जताई। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और विदेश में कर्नाटक में सोमवार देर रात एक घर में रेफ्रिजरेटर फटने से आग लग गई। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। तो इन खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। सेंट जोसेफ स्ट्रीट तेरूज में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती भगन, जो मैडम साधु नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 2:30 बजे उनके घर सेंट जोसेफ स्ट्रीट तेरूज से उठाकर सिपाही पगले वाले दीपक की शमशान भूमि ली जाए। चाय की क्रमिशन टूडे 2:30। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विश्वानी चौधरी, पैदाशी नाम लट्टू और जो संगीता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके घर ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर इसी दो रोज की शमशान भूमि दी जाए। चाहे कि क्रमिशन टूडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
0: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
3: RM2 Radio Musty.

Retro Rhythm. So well, after Masti Mornings, it's time कि हम गानों के अंदाज को थोड़ा सा बदले. जैसे कि आप जानते हैं, सुबह से लेकर रात तक बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए हम लेकर आते हैं. नए हो या फिर पुराने, हर फ्लेवर आप तक पहुंचाते हैं. अभी के लिए तो 12:07, मैं हूं परी आपके साथ. ट्यूजडे आफ्टरनून 15th of September, यहाँ पर गणपति बप्पा मोरिया के नाद के साथ आपकी स्पेशल विशेष भी पहुंच रही है. सो वेल फ्रेंड्स, आपकी गुड विशेष आप मुझ तक यानी कि परी तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499 1294. एंड शुभकामनाओं का ये दौर तो यहाँ पर जारी रहेगा. ब्यूटीफुल गाने आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए गणपति बप्पा मोरिया के नाद के साथ ये खूबसूरत गाना आप सभी के नाम.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: North, South, East or West, tune into the very best Radio Masti, your number one Bollywood station.

तो चलिए दोस्तों ब्यूटीफुल गानों का कारवां आपके लिए, अगर आप भी पुराने गानों को पसंद करते हैं सो दैट्स द राइट टाइम जहां पर 12 से लेकर 2 बजे तक ये गाने हम आप तक पहुंचाएंगे और आपका प्यार आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आप मुझ तक यानी कि परी तक पहुंचा सकते हैं 5499-1294 पर। चलिए अभी के लिए यहां पर हमारे साथ कनेक्टेड हमारे बहुत सारे दोस्त और चाचा महीन आप भी हमारा साथ दे रहे हैं और थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल वंडरफुल विशेज जो आपने हम तक पहुंचाई है। कहते हैं इस पावन और शुभ अवसर पर गणपति बापा का जो आशीर्वाद है सब पर ऐसे ही बना रहे और कामना है दैट बेस्ट विशेज और सक्सेस सबको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच चाचा महीन और हम भी चाहते हैं कि आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो बिल्कुल ऐसे ही बनी रहे, आपके चेहरे की स्माइल कभी भी कम ना हो और जिंदगी में जो खुशियां हैं वो दुगना होती रहे। सो अभी के लिए दोस्तों ऐसे ही गुड विशेज आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अभी के लिए चाचा महीन आए हैं अपना प्यार लेकर एंड ऑल द वे सात समंदर पार से प्रकाशवती जी नाइस सिलेक्शन एंजॉय कर रही हैं आप और हमारे साथ कनेक्टेड हैं आपका पूरा परिवार राम प्रकाश रामराज बिजयंती सूर्या सिमी रवि और सभी की तरफ से गणपति बाप्पा मोरिया गुड गुड विशेज आप हम तक पहुंचा रही है। तो ऐसे ही प्यार आप हम तक पहुंचाते रहिए ऑन 5499-1294 एंड वेल कहते हैं हेलो रेडियो मस्ती टीम आई वांट टू विश होल फैमिली इन मॉरिशस रोजल पायस गणेश चतुर्थी और ये है विशेज फ्रॉम याचना और गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया ये विशेज लेकर आई हैं आप। तो चलिए ऐसे ही यहाँ पर प्यारे गाने आपके लिए हम चलाते रहेंगे ऑन रेडियो मस्ती फॉर नाउ इट्स रेट्रो रिदम और खूबसूरत गाने अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक मेरे साथ ऑन रेडियो मस्ती। मैसेजेस डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: to Radio Musti. जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
1: आर एम टू
0: रेडियो मस्ती

0: to Radio Musti.
1: Cirque Zavata à Bagatelle. Prépose pour un moment magique et ban spectacle cirque extraordinaire. Tous jeudi et vendredi, 18h, achetez des billets, gagnez gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vinguez Cirque Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et ban l'école, compagnie et ban groupe, nous pas fin oubliez eux. Nous avons un package spécial pour eux. Avec ban spectacle à partir 11h. Allô, qui se peut attendre? Réserve votre place à la même, l'eau 50 50 94 13.
2: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
3: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
4: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू a very pious Ganesh Chaturthi.
0: RM2
5: Radio Musti.
6: North, South, East or West, tune into the very best Radio Musti, your number one Bollywood station.
7: Retro Rhythm.
8: और जी हाँ दोस्तों, गुड विशेस की भरमार ऑन दिस ब्यूटीफुल पायस डे। वेल, आज है 15th ऑफ सितंबर और आप हमारा साथ दे रहे हैं एंड आपकी गुड विशेस हम तक पहुंच रही हैं 5499-1294 पर। सो वेल, यहाँ पर नसरीन वाकवा से हमारा साथ दे रही हैं। यस, आज हवाएं कुछ तेज चल रही है, मौसम भी थोड़ा एक्स्ट्रा सर्दी वाला, सो ऐसे में हम भी लेकर आए हैं कुछ वॉर्म सॉन्ग्स आपकी इस आफ्टरनून को स्पेशल बनाने। थैंक यू सो मच नसरीन फॉर योर गुडी गुड विशेज। आपके लिए भी भेज रहे हैं हम बहुत सारा प्यार From Radio Musti. श्वेता हुकुम बोनाकाय से विशिंग हबी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। विशेज है फॉर मम सुया, डैड लालदेव बिहारी ऑफ कुंगुमा, आपकी डॉटर्स रिधि सोनाक्षी और साथ में है किड्स अवनी एंड वंश। लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू देम, उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज। वी ऑल्सो हैव मेधा, मनीष, श्रेया, आर्यन, नील, शीतल, विकी, रतीना, संगीता एंड नितिन। मुंडा ब्लॉट से हमारा साथ दे रहे हैं। सो गाना होगा आपके नाम

0: कहते हैं कि जब भी जिंदगी में रास्ता नजर ना आए तो गणपति जी को याद कर लेना, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ देव नहीं भक्तों के सच्चे दोस्त भी है। हैप्पी गणेश चतुर्थी बापा, इस बार इतनी दुआ है कि आप हमारे दिल से भी कभी दूर ना जाएं। आपका आना ही खुशियों की शुरुआत है। एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम आकाश चेतन मनसुख। गुड विशेस आपने पहुंचाई है और बापा की ब्लेसिंग्स जो है वो हम सब पर ऐसे ही बनी रहेगी। थैंक यू सो मच आकाश। अभी के लिए गाना आपके नाम एंड फॉर ऑल मनसुख परिवार। और चलिए यहाँ पर कहते हैं गणेश चतुर्थी विशेस, ये है फॉर चिल्ड्रन। बेटा विकी, बहू कीर्ति, साथ में आपकी बेटी श्वेता, दामाद रोशन, सभी हुकुम परिवार है। फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन रिधि, सोनाक्षी, अवनी एंड क्यूट वंश जो जा रहे हैं फॉर विसर्जन एट सी साइड, तो चलिए उनके लिए भी शुभकामनाएं एंड बहुत सारा प्यार आप पहुँचा रहे हैं। साथ ही ऐसे ही आपके गुड विशेज, आपका प्यार हम तक पहुँचाएं और बापा की ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचाते रहेंगे, साथ दे रहे हैं आर एम टू रेडियो मस्ती पर। मैं हूं परी आपके साथ एंड दैट्स योर रेट्रो रिदम।
1: एमपीसी च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
2: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
0: और जैसे हम कहते हैं कि बापा आते हैं खुशियां लेकर, लेकिन जब जाते हैं आंखें नम कर जाती हैं। कुछ लोग आज विसर्जन कर रहे हैं, कुछ लोग 5 दिन बाद, कुछ लोग 10 दिन बाद, लेकिन बिल्कुल बापा का जो प्यार है, बापा का जो आशीर्वाद है, वो तो हमेशा फॉर एवर हम पर बना रहेगा। अभी के लिए फॉर ऑल द गणेश भक्त, फॉर ऑल बापा भक्त, वी हैव दिस गाना। साथ दे रहे हैं आप दोस्तों, ये है आपका रेट्रो रिदम। मैं हूं परी आपके साथ, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपकी बेस्ट विशेस 5499-1294 पर आपका इंतजार।

RM2 Radio Musti. जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी RM2 रेडियो मस्ती

0: 2 रेडियो मस्ती
1: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musti.
1: एक और लेजेंड, यस दैट वाज इन द वॉइस ऑफ एसपी बालासुब्रमण्यम। जैसे हम कहते हैं, आवाजें हमेशा अमर रहती हैं और ये आवाजें हमेशा हमारे बीच रहेंगी। चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ, आप भी साथ निभा रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती एंड दैट्स योर रेट्रो रिदम, जहां पर ये खूबसूरत गाने बन रहे हैं आपके आफ्टरनून म्यूजिकल हमसफर। और वेल, यहाँ पर ज्योति जी साथ दे रही हैं शातो बनारस से, गाना डेडिकेट कर रही हैं फॉर आशनी रेखा सुरेखा और सभी मदब परिवार के नाम। गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपने पहुंचाई, थैंक यू सो मच। तैयब जी हमारा साथ दे रहे हैं, प्यार भरा सलाम आपको, ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम एंड सेंडिंग लोड्स ऑफ गुड विशेस टू यू एंड टू ऑल योर लव्ड वंस। विदुला केविन कृष्णवी केवीश साथ में है, राजसा सबिता रामफल परिवार हमारे साथ कनेक्टेड है। आप गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आप भी पहुंचा रहे हैं। अनगीता बोला राम फ्रॉम शातो बनारस आप भी साथ दे रही हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। सो बस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके नाम गोज आउट फॉर एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रफी साहब की आवाज, ये खूबसूरत सा गाना, और इसी गाने के साथ हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट आवर। साथ रहेगा आपका और मेरा दिन के 4 बजे तक।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,

0: to Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: Time check, exactly 1 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। देश में गणेश चतुर्थी पर्व के जश्न का माहौल बना हुआ है। सभाओं और परिवारों के यहाँ कल गणेश भगवान की मूर्तियों की स्थापना विधि चली और रात्रि जागरण हुआ। सुबह उत्तर पूजा चली और दोपहर से टोलियाँ विसर्जन के लिए निकल रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आज शाम विसर्जन अवलोन में किया जाएगा। इस साल जनवरी से सितंबर महीने के बीच पुलिस को नाबालिगों के लापता होने के 193 मामलों की सूचना मिली। इनमें से ज़्यादातर मामले घर से भागने के थे। नतीजन 181 बच्चे सुरक्षित मिल गए। ऐसी स्थितियों में परिवार की पहली प्रतिक्रिया गहरी चिंता और बच्चे के जल्द से जल्द घर लौटने की इच्छा होती है। मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड की तरफ से माता पिता को सलाह दी जाती है कि बच्चों के व्यवहार पर करीबी से नज़र रखी जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेटो के लड़ाकू विमानों ने लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र में ड्रोन प्रवेश करने वाले एक ड्रोन को मार गिराया है। अभी तक इसके स्रोतों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने देश की जनता से सतर्कता बरतने की मांग की है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। सेंट जोसेफ स्ट्रीट टेरोज में 88 साल की 88 years old श्रीमती धनवंती बगन जो मैडम साधु नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान सेंट जोसेफ स्ट्रीट त्यागूर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही बोले वालिदे पद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडिया 2:30 PM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 63 साल की 63 years old श्रीमती विश्वानी चौधरी पैदाशी नाम लतू जो संगीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके मकान ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजी दो रोज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडिया 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
4: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: और इसी खूबसूरत आरती के साथ आप सभी का हम स्वागत करते हैं। गणेश जी आपको नूर दे, खुशियां आपको संपूर्ण दे, आप जाएं गणेश जी के दर्शन को और गणेश जी आपको सुख संपत्ति भरपूर दे। इसी विशेष के साथ वार्म वेलकम हमारे सभी लिसनर्स का 1:06 ट्यूजडे आफ्टरनून 15th of September। मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर रेट्रो रिदम।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti।
0: आप जानते हैं दोस्तों, पुराने गानों का कारवां होता है 60s, 70s, 80s and 90s। ये जो खूबसूरत दौर था बॉलीवुड का, उसी दौर को हम आप तक पहुंचाते हैं विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। अभी के लिए तो समय है बस इन्हीं गानों को आप तक पहुंचाने का। मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक, और रेट्रो रिदम प्रोग्राम पुराने गानों को एंजॉय कर पाएंगे अभी से लेकर दिन के 2 बजे तक। सो साथ देते रहिए, और है अगर आपकी गुड विशेज तो है आपका इंतजार 5499-1294 पर।

0: 2
1: Radio Musti.
2: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
0: RM2
1: रेडियो मस्ती

So, यहाँ पर ये जो मैजिक है ओल्ड सॉन्ग्स का मैजिक ये हम आप तक पहुँचा रहे हैं. ओल्ड सॉन्ग्स तो हैं लेकिन कह सकते हैं कि दे हैव एज्ड सो ब्यूटिफुली. इतने सालों बाद भी जब हम इन गानों को सुनते हैं लगता है कि बस इन गानों को सुनते जाएं. तो चलिए अभी के लिए अपारो परिवार हमारा साथ दे रहे हैं. ओम गण गणपतये नमः. गुड विशेज आप हम तक पहुँचा रहे हैं. रवीश प्रशा लव शाह एंड अपारो फैमिलीज ऑफ वर्ष नुआ. सो वी हैव दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग आपके लिए. हवा तो आज काफ़ी तेज़ चल रही है और इन्हीं तेज़ हवाओं के साथ हम भी अपना प्यार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. टेक योर प्रिकॉशंस लेडीज एंड जेंटलमैन. हमारा साथ दे रहे हैं. मौसम को एंजॉय करें, गानों को एंजॉय करें आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ. यहाँ पर कविता जी साथ दे रही हैं आप भी और कहती हैं एंजॉइंग द सॉन्ग्स और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं टू एवरीवन. थैंक यू सो मच कविता जी. अभी के लिए ये प्यारा सा गाना चल पड़ा आपके लिए फॉर ऑल योर लव्ड वंस फॉर ऑल द लिसनर्स. साथ ही यहाँ पर मीनाक्षी हमारा साथ दे रही हैं और डेडिकेट करना चाहती हैं गाना फॉर समवन वेरी स्पेशल. चलिए उनके लिए भी गुड विशेज एंड आपके नाम भी बहुत सारा प्यार फॉर ऑल द लिसनर्स. ब्यूटिफुल सॉन्ग लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ें. हाथी मेरे साथी फिल्म का ये गाना. Enjoy this one.

0: 2 रेडियो मस्ती
1: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: So, जैसे हम कहते हैं दैट हर दौर में कुछ ऐसे गाने आए जिन्हें हम हमेशा सुनना पसंद करते हैं तो ये था 90s का दौर जिसे हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं और कोशिश तो हमारी यही रहती है कि ये जो गाने हैं वो आपके जो भी दौर में आपने इन गानों को एंजॉय किया हो उनके साथ जो भी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनी हो उन मेमोरीज को एक बार फिर ताज़ा कर दें सभी के लिए दोस्तों हमारा साथ दे रहे हैं आप 1:29 होने को है तेज़ हवाएं चल रही है बाहर एंड आज बापा के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग निकले हैं बहुत सारे लोग आज विसर्जन के लिए भी जा रहे हैं तो बस आप हमारे साथ ट्यून इन रहें और इन प्यारे गानों को हम आप तक पहुंचाएंगे गुड विशेस को आप तक पहुंचाएंगे वेल विजया जी हमारा साथ दे रही हैं और वेल अभी भी आप थोड़ी सी बीमार हैं एंड अब आपके हबी भी थोड़े से बीमार हो गए हैं तो आई विश बोथ ऑफ यू अ क्विक रिकवरी अपना ख्याल रखिए मौसम तो अब थोड़ा सा ख़राब होता हुआ दिख ही रहा है सो ऐसे में टेक योर प्रिकॉशंस एंड हैव सम इन्फ्यूजन्स कुछ वॉर्म ड्रिंक्स आप लेते रहें ताकि यू विल फील बेटर एंड जल्दी जल्दी आप ठीक हो जाएं यही विशेज हम पहुँचा रहे हैं आप तक अभी के लिए सेंडिंग लोड्स ऑफ लव एंड सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ आपको एंटरटेन रखेंगे ऑन रेडियो मस्ती मिस्टर रवि हमारा साथ दे रहे हैं आप मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आप बताएं कैसे बीत रहा है आपका ये ट्यूसडे आई डू होप दैट यू आल्सो सेलिब्रेटिंग और गुड विशेस आपके लिए फॉर ऑल योर लव्ड वंस सो थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू अ ब्लेस्ड डे अहेड गुड विशेस आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे ऑल द वे सात समंदर पार फ्रांस से आए हैं मिस्टर सांगा अपनी गुड विशेस के साथ चलिए अगला गाना होगा आपके नाम एंड हैव अ ग्रेट टाइम आरएम टू रेडियो मस्ती जहाँ पर कोशिश रहती है कि इन गानों के साथ आपके दिल को हम लुभाते रहें सो चल पड़ा ये गाना एंड दैट्स इन द वॉइस ऑफ किशोर कुमार लता मंगेशकर आराधना फिल्म से लिया हुआ ये गाना

0: 2 Radio Musti.
1: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
0: RM2
2: रेडियो मस्ती

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
3: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
2: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: RM2 Radio Musty.
1: वेल फ्रेंड्स 154 इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. उसके बाद समय हो जाएगा आपके बॉम्बे जॉकीज का यानी कि वेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. पुराने गानों के बाद टाइम फॉर सम लेटेस्ट ट्रैक्स. लेकिन जैसे हमने कहा कि गुड म्यूजिक आप तक पहुंचाएंगे, नए हो या फिर पुराने, गाने तो हमेशा दिल को लुभाते हैं. सो बस साथ दीजिए ऐसे ही हमारा अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक. मैं हूं परी आपके साथ राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. फॉर नाउ आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ें. खेल खेल में ये गाना आप सभी के लिए.

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check exactly 2 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें. अदिति से आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार. देश में गणेश चतुर्थी पर्व के जश्न का माहौल बना हुआ है. सभाओं और परिवारों के यहाँ कल गणेश भगवान की मूर्तियों की स्थापना विधि चली और रात्रि जागरण हुआ. सुबह उतर पूजा चली और दोपहर से टोलियाँ विसर्जन के लिए निकल रही हैं. राष्ट्रीय

0: पर आज शाम विसर्जन अवालोन में किया जाएगा। इस साल जनवरी से सितंबर महीने के बीच पुलिस को नाबालिगों के लापता होने के 193 मामलों की सूचना मिली। इनमें से ज़्यादातर मामले घर से भागने के थे। नतीजन 181 बच्चे सुरक्षित मिल गए हैं। ऐसी स्थितियों में परिवारों की पहली प्रतिक्रिया गहरी चिंता और बच्चे के जल्द से जल्द घर लौटने की इच्छा होती है। मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड की तरफ से माता पिता को सलाह दी जाती है कि बच्चों के व्यवहार पर करीबी से नज़र रखी जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेटो के लड़ाकू विमानों ने लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक ड्रोन को मार गिराया है। अभी तक इसके स्रोतों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने देश की जनता से सतर्कता बरतने की मांग की है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: RM2 Radio Musti.
1: जी हाँ दोस्तों, दिल से जो भी मांगोगे वो मिलेगा। ये गणेश जी का दरबार है, देवों के देव वक्रतुंड महाकाय को अपने भक्तों से प्यार है और ये गणेश चतुर्थी आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। गणपति बाप्पा सबकी झोलियाँ खुशियों से भर कर जाएं, यही विशेष आप तक पहुँचा रहे हैं। एंड वेल वॉर्म वेलकम करते हैं आपका आफ्टर रेट्रो रिदम, इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। लेकर आए हैं मिक्स ऑफ सॉन्ग्स आपके लिए, कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स, कुछ ऐसे गाने जो हमेशा से आपके दिल के करीब रहे हैं। So enjoy the songs and आपका साथ, आपका प्यार, आपके messages, dedications के जरिए on 5499-1294. For now, Harshit Saxena की आवाज from the film Murder 2. We have this गाना for everyone who's connected हमारे साथ। गानों को enjoy करें, दिल से हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी good wishes हम तक पहुंचाएं। For now, enjoy this one.

0: 92 Radio Musti
1: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं अब इसकी जरूरत नहीं हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है डिजाइनर लहंगास लच्छास जोधपुरीज साड़ीज क्रॉप टॉप्स शेरवानीज कंप्लीट सूट्स ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस हर कोड़ी फैशन रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन फोन नंबर 5799-3782 हर कोड़ी फैशन परंपरा एलिगेंस एंड क्वालिटी
1: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
0: RM2 रेडियो मस्ती

0: North, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: Bombay Talkies.
2: Radio Masti.
3: Radio Masti.
4: वेल फ्रेंड्स, आप जानते हैं बॉम्बे टॉकीज़ बी टाउन की खबरें हम आप तक

पहुंचाते हैं तो बात करेंगे दिलजीत दोसांझ की। हाल ही में उन्होंने लंदन के मशहूर वेम्बली स्टेडियम में एक शानदार कॉन्सर्ट किया जिसमें करीब 90,000 लोग पहुंचे। इस ऐतिहासिक शो के बाद दिलजीत ने अपने फैंस का खास अंदाज से शुक्रिया अदा किया। दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, कल इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। इसे मुमकिन बनाने वाले भी आप ही लोग थे, यहाँ तक कि यह सोचने की हिम्मत देने वाले भी आप ही थे और ये बताने के लिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, थैंक यू सो मच। उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद देते हुए लिखा कि सच कहूँ तो मैं स्टेज पर सिर्फ उस सपने का गवाह था जो सामने हो रहा था। कल आपने वो कर दिखाया जिसके बारे में सोचना भी अपने आप में एक सपना था, थैंक यू, शुक्रिया। दिलजीत दोसांझ ने अपने ऑरा वर्ल्ड टूर के तहत वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म किया। करीब 90,000 लोग की क्षमता वाले इस स्टेडियम में उनका शो जो था वो पूरी तरह पैक्ड रहा। और इसके साथ ही दिलजीत ने ऐसे मतलब दिलजीत जो है वो ऐसे पहले पंजाबी कलाकार बने जिन्होंने वेम्बली में इतने बड़े लेवल पर परफॉर्म किया। कॉन्सर्ट की शुरुआत दिलजीत ने अपने खास अंदाज में पंजाबी आ गए ओए कहकर की और उसके बाद उन्होंने गोट, लवर, हस हस और बॉर्न टू शाइन जैसे अपने कई हिट्स गाने गाए। साथ ही पूरे शो में फैंस जो है वो झूमते नजर आए। साथ ही वहां पर एक गाना इतना पसंद किया गया कि वो अब हर जगह वायरल हो रहा है, वो है नुसरत फतेह अली खान साहब का सासों की माला। पर जब उन्होंने स्टेज पर ये गाना गाया, 90,000 पीपल सिंगिंग टुगेदर, ओ माय गॉड, दैट वाज अ हिस्ट्री। एंड ये तो है कि एक ऐतिहासिक मोमेंट बन गया जहां पर ही वाज फर्स्ट पंजाबी जिन्होंने पंजाबी सिंगर जिन्होंने इतने बड़े ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया और ऐसे पहले इंडियन जिनके लिए ये जो शो था वेम्बले का वो पैक्ड रहा, यानी कि कैपेसिटी है 93,000 लोगों की या 93,000 लोगों से वेम्बली स्टेडियम कम्प्लीटली पैक था फॉर दिलजीत दोसांझ शोज। सो यहाँ पर ये जो मोमेंट था वो ऐतिहासिक हो गया। अब दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में ये गाना हम कब सुनेंगे ये तो हम नहीं जानते बिकॉज दैट वॉज अ लाइव परफॉर्मेंस जो उन्होंने किया एट वेम्बली स्टेडियम। लेकिन यस, जो ओरिजिनल गाना है नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में, ये हम आपको ज़रूर सुना सकते हैं। सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना और आजकल मिर्ज़ापुर में भी ये गाना काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। कुछ गाने जैसे हमने कहा कि होते हैं इतने पॉपुलर और जितनी भी बार इन गानों को सुने दिल करता है बस इन गानों को हम सुनते जाएं। सो अब हो रहा है ये वायरल मिर्ज़ापुर में और साथ ही साथ दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में इस गाने की जो रील्स हैं वो इतनी वायरल हो रही है, शायद आपने भी देखी होगी। सो चलिए अभी के लिए मैजिक को रिक्रिएट करते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब के फैंस

0: 2 रेडियो मस्ती। जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
1: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
0: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
2: Samsung Galaxy S26 FE अब आ गया है सिर्फ 36,990 रुपीस में। साथ में मिल रहा है 6,000 रुपीस का डिस्काउंट। आप सब जानते ही हैं, लेकिन थ्वासिसाई में आपके पास पेमेंट की चॉइस भी है। आप चाहें तो अपने बैंक कार्ड से 3 महीने में बिना किसी इंटरेस्ट की पेमेंट करें, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से 12 महीने में बिल्कुल बिना इंटरेस्ट की पेमेंट। और हाँ, भूलिएगा मत, गिफ्ट में मिलेंगे सैमसंग केयर प्लस और गूगल AI प्रो। तो देर किस बात की है, सैमसंग गैलेक्सी S26 FE अब अवेलेबल है थ्वासिसाई के स्टोर्स में और thwasisan.mu पर भी।
0: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
3: RM2
4: रेडियो मस्ती।
5: Well, Anita Ji Flux going seaside with unke little twin grandsons Kivansh and Kiyansh. So ye gana aapke naam sabhi hamare listeners jo hamara saath de rahe hain, best mix of music aapke liye lekar aaye hain. RM2 Radio Masti, main hu Pari aapke saath. Abhi ke liye it's time for your Bombay Talkies.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
3: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही हैं? अब इसकी जरूरत नहीं हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है डिजाइनर लहंगास लच्छास जोधपुरीज सारीज क्रॉप टॉप्स शेरवानीज कंप्लीट सूट्स ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस हर कोड़ी फैशन रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन फोन नंबर 5799-3782 हर कोड़ी फैशन परंपरा एलिगेंस एंड क्वालिटी
4: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं
2: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
0: RM2
1: रेडियो मस्ती RM2 रेडियो मस्ती

0: to Radio Musti. जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
1: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं
0: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी
2: RM2
3: Radio Musti

0: RM2 Radio Musti.
1: And with this track, हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. लौट कर आएंगे.

That's your Bombay Talkies on Radio Masti. 2:56 हो रहे हैं दोस्तों, साथ दे रहे हैं आप और आज के इस पायस दिन की बहुत सारी गुड विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं.

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें अदिति से, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी श्रोताओं को भी नमस्कार। पिछले कुछ दिनों के दौरान देश में हुई बारिश के बावजूद जलाशयों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। इसके लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पानी के दूसरे स्रोतों के विकल्प मजबूत कर रही है। मोबाइल ट्रीटमेंट यूनिट्स के इस्तेमाल से नदियों पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है, साथ ही भूमिगत जलाशयों से पानी निकालने का काम भी तेज किया जा रहा है। मकसद है पानी के भंडार सुरक्षित रखना और दिसंबर महीने तक देश में पानी की सुचारू आपूर्ति

0: शक्ति बनाए रखना। CWA के अनुसार अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो पाबंदियां और सख्त की जाएंगी। और आस्था भक्ति तथा उल्लास से आज पूरा मॉरिशस गणेशमय बना हुआ है। घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद जगह जगह श्रद्धालु गणपति बापा को भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। भजन मंत्र और जय घोष के बीच विसर्जन विधि संपन्न की जा रही है। यही संदेश देता है कि बापा का स्वरूप भले ही जल में समा जाए, उनका आशीर्वाद और उनकी दिव्य भक्ति और शक्ति सदा भक्तों के हृदय में बनी रहती है। इस साल जनवरी से सितंबर महीने के बीच पुलिस को नाबालिगों के लापता होने के 193 मामलों की सूचना मिली। इनमें से ज्यादातर मामले घर से भागने के थे। नतीजन 181 बच्चे सुरक्षित मिल गए। ऐसी स्थितियों में परिवार की पहली प्रतिक्रिया गहरी चिंता और बच्चे के जल्द से जल्द घर लौटने की इच्छा होती है। मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड की तरफ से माता पिता को सलाह दी जाती है कि बच्चों के व्यवहार पर करीबी से नज़र रखी जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरानी सुरक्षा चीफ ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इनकार किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी शांति वार्ता के लिए तत्पर नहीं दिख रहे। इस अनिश्चितता के बीच आज फिर से हॉर्मुज जलमार्ग में एक जहाज पर हमला हुआ। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शुभ समाचार। रॉयल रोड बॉशियाई में एक 60 साल के 61 ईयर्स ओल्ड श्री अजयदेव सिंह गोपाला जो अजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और बॉशियाई चाय के कारखाने में पूर्व सदार का काम करते थे। इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे के मकान रॉयल रोड बॉशियाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉशियाई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो आफ्टरनून। 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अमरावती आदुंकली पैदाशी नाम गजाधर जो शीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे लाशा पैलादौंत एलियन सन्स रॉयल रोड बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: तो चलिए दोस्तों यहां पर आपके लिए भी गणपति बाप्पा मोरया और सेंड कर रहे हैं आपके लिए बहुत सारी गुड विशेस रूप बड़ा निराला गणपति मेरा सबसे प्यारा जब कभी भी कोई आए मुसीबत मेरे बापा ने पल में ही हल कर डाला वैसे कहते हैं ना कि जब भी आते हैं बापा तो खुशियां लेकर आते हैं जाते जाते हमारे सारे विघ्न साथ लेकर जाते हैं तभी तो कहते हैं विघ्न हरता है सुख करता है और हमारे जो गणपति बापा है वो बस उनकी ब्लेसिंग्स उनका प्यार सब पर ऐसे ही बनाए रखे एंड गुड विशेस टू ऑल दोज जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ ही आज बहुत सारे लोग विसर्जन के लिए भी जा रहे हैं अगर आप ऑलरेडी सी साइट पर हैं अगर इस वक्त आप ड्राइव कर रहे हैं जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है भक्ति भाव में डूबे हुए हैं तो बस दैट्स द राइट प्लेस दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज अभी के लिए आर एम टू रेडियो मस्ती बी टाउन की खबरों के साथ साथ कुछ बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए हम लेकर आए हैं साथ देने के लिए शुक्रिया और हो रहे हैं आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर
1: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट Radio Masti, your number one beloved station.

So well, यहाँ पर best mix of music लेकर आए हैं और जैसे हमने कहा कि आज तो छुट्टी का दिन है, also we are celebrating this pious day and celebrations के साथ साथ गाने भी शामिल हो रहे हैं on RM to Radio Masti. हवाएं तेज हैं और ऐसे में आप हमारा साथ दे रहे हैं. So we have this beautiful song, Jubin Nautiyal की आवाज़ for all his fans and all the listeners of Radio Masti.

And well, friends, it's 3:54 और आ गई है दिव्या आपके लिए गुड म्यूजिक लेकर जहां पर कुछ प्यारे गाने आपको सुनाएंगी और उनकी मीठी बातों से आपको एंटरटेन करेंगी. तो बस उनका साथ निभाइए आप और हमें दीजिए इजाजत. मुलाकात होगी कल मॉर्निंग मस्ती के साथ 9 से लेकर 12 बजे तक. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अदिति से नमस्कार।
1: नमस्कार दिव्या, श्रोताओं को भी नमस्कार। पिछले कुछ दिनों के दौरान देश में हुई बारिश के बावजूद जलाशयों को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। इसके लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पानी के दूसरे स्रोतों के विकल्प मजबूत कर रही है। मोबाइल ट्रीटमेंट यूनिट्स के इस्तेमाल से नदियों पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है, साथ ही भूमिगत जलाशयों से पानी निकालने का काम भी तेज किया जा रहा है। मकसद है पानी के भंडार सुरक्षित रखना और दिसंबर महीने तक देश में पानी की सुचारू आपूर्ति बनाए रखना। CWA के अनुसार अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो पाबंदियां और सख्त की जाएंगी। आस्था भक्ति और उल्लास से आज पूरा मॉरिशस गणेशमय बना हुआ है। घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद जगह जगह श्रद्धालु गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। भजन मंत्र और जय घोष के बीच विसर्जन किया जा रहा है। यही संदेश ये देता है कि बप्पा का स्वरूप भले ही पानी में समा जाए, उनका आशीर्वाद और उनकी

0: दिव्य भक्ति सदा भक्तों के हृदय में बनी रहती है। राष्ट्रीय स्तर पर विसर्जन समारोह का आयोजन आवालोन में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरानी सुरक्षा चीफ ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इनकार किया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी शांति वार्ता के लिए तत्पर नहीं दिख रहे। इस अनिश्चितता के बीच आज फिर से हॉर्मुज जलमार्ग में एक जहाज पर हमला हुआ है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया। दीजिए नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Music, Dr. Gadda.
2: RM2, Radio Musti.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: म्यूजिक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना तो मुझे पूरा यकीन है कि इट एक्ट्स लाइक अ बूस्टर टू मेनी ऑफ यू, क्योंकि ये ऐसा वैसा गाना नहीं है, बप्पा का गाना है भाई। और जोर से कहिए हमारे साथ, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और इसी वजह से कहते हैं कि अगले बरस तू जल्दी आ, क्योंकि बप्पा को विदा करते करते आँखें नम हो जाती हैं और हम उनकी राह ताकते रहते हैं। और अभी से ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि अगले साल बप्पा कब हमारे घर आएंगे। तो चलिए, आपको गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सारा प्यार टू ईच एंड एवरी वन। एंड जैसे कल हमने कहा था, आज भी कहेंगे, बस यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर से जाते जाते बप्पा आपका पूरा सारा जो दुख है वो हर ले, और जिंदगी में जितने भी सारे आपके अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो पूरा सेट करके ही जाए। तो चलिए, यहाँ पर गणेश चतुर्थी का वाइब्स फुल ऑन है और साथ में दिव्या का साथ भी है टिल 7 PM इन योर म्यूजिक टक टक टक। आम छुट्टी का दिन है, जितने भी सारे लोग इस वक्त विसर्जन के बाद घर वापस आ चुके हैं, शायद आप थके हारे हैं, अब आपको थोड़ा रेस्ट भी करना है, तो चलिए रिलैक्स करिए RM2 के साथ, जहाँ पर हम आपको एंटरटेन करेंगे टिल 7 PM। सो आपके मैसेजेस का भी इंतजार रहेगा ऑन 5499-1294, यस योर मैजिकल नंबर, जहाँ पर हमेशा आप अपना प्यार और आपका सपोर्ट दिखाते रहते हैं। प्यार तो इतना बरसाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस प्यार का बौछार हो रहा है। तो चलिए, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए हम पर ऑन 5499-1294।
0: म्यूजिक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: राइट, शाम के 4:21 हो चुके हैं दिव्या का साथ। इट्स अ वंडरफुल ट्यूसडे आफ्टरनून जहां पर हम और आप मिल रही हैं ऑन दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इवनिंग। और इसको और भी ख़ास बनाने के लिए ऑफ कोर्स हम लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल गाने एंड साथ में स्पोर्ट्स अपडेट भी थोड़ी देर में लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस को कैसे मिस कर सकते हैं। चलिए, किसी ने हमें मैसेज किया है, ओम श्री गणेशाय नमः। दिव्या, यू नॉट वेल? यस, थोड़ी सी बीमार हैं, थोड़ी सी आवाज़ में और गले में खराश है, लेकिन कोई बात नहीं, आप साथ हैं तो हम फिट एंड फाइन हैं। माधवी जी, आप हैं सैन फ्रांसवा कालोजिन से एंड कहती हैं कि इट्स सो विंडी एंड चिली हियर एंड आप सिलाई करते करते हमारा साथ दे रही हैं। थैंक यू सो मच स्वीट माधवी जी, और ऐसे ही आप अपना साथ और अपना प्यार बरसाते रहे। हेलो दिव्या जी, आशा जानू फ्रॉम कॉटेज विशिंग ऑल डिवोटीज अ पायस गणेश चतुर्थी। एंड आप कहते हैं कि गणपति का नाम लीजिए, अपने सारे काम गणपति जी को कोटि कोटि प्रणाम फ्रॉम ममा कुमारी। आपके नेफ्यूज़ हैं शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजू राज, सभी जानू फैमिली एंड ऑल लिसनर्स के नाम। चलिए, यहाँ पर हमारी प्यारी प्यारी सी मंती जी भी कनेक्टेड हैं हमारे साथ। कहती हैं, हाय दिव्या, हैप्पी गणेश चतुर्थी, सेम टू यू, ग्रेट प्लेलिस्ट, प्लीज डू आल्सो इंक्लूड द सॉन्ग गजानना फ्रॉम मूवी बाजीराव मस्तानी और मोरिया फ्रॉम द मूवी डॉन। ये मोरिया रे वाला गाना हमने कल चलाया था, तो चलिए विल कंसिडर द बाजीराव मस्तानी वाला गाना। हम देखते हैं कहाँ पर हम इस गाने को फिट कर पाएंगे। एंड मंती जी, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए, जितने भी सारे लोग इस वक्त विसर्जन से अभी घर वापस लौट रहे हैं या फिर कुछ लोग अभी आप बढ़ रहे हैं विसर्जन के लिए, तो आपको बोंकुआज और हमारा साथ देते रहिए। इट्स योर म्यूजिक टकटकाटक जहां पर दिव्या का साथ है टिल 7 PM।
0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: All right, 4:35 हो चुके हैं और चले भी के लिए हमने वादा किया था कि इस आवर के दौरान स्पोर्ट्स सेगमेंट भी लेकर आएंगे. सो वी हैव द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड विद आवर स्पोर्ट्स गुरु अरविंद. उनको हम जरूर वेलकम करेंगे. गुड आफ्टरनून आपको.
4: Good afternoon, आपको. Good afternoon, RM2 listeners. The latest from the sports world. Leeds United Premier League के टॉप थ्री में आ गया है, जबकि इस सीजन न्यूकासल यूनाइटेड की पहली हार हुई. लीड्स यूनाइटेड 4, न्यूकासल यूनाइटेड 1, और लीड्स यूनाइटेड अभी तक अपराजित अनडिफीटेड है. डोमिनिक कैल्वर्ट लेविन का लाजवाब परफॉर्मेंस रहा. फर्स्ट हाफ में एक ओन गोल और कैल्वर्ट लेविन और बोगल का एक एक गोल. लीड्स यूनाइटेड 3-0 से आगे. फिर सेकंड हाफ में दूसरे भाग में ओकाफो का गोल. एक कंसोलेशन गोल न्यूकासल यूनाइटेड का रहा तुरे की ओर से. नए मैनेजर माचियास जेजल की पहली हार है इस सीजन. डोमिनिक कैल्वर्ट लेविन ने कल न्यूकासल यूनाइटेड को खूब परेशान किया. इस सीजन 4 मैचों में 3 गोल स्कोर कर चुका है. इंग्लैंड की नेशनल टीम से बुलावा आने वाला है. स्पेन के ला लीगा में कल रियल बेटिस ने एवेजा कर विलारियल को 2-1 से हराया. इटली के सेरी आ में कोमो 2 पामा 1. एएस रोमा ने एवेजा कर टोरिनो को तोड़ा 2-0 से. और इंटर मिलान 5 उदिनीजे 3. एएस रोमा और इंटर मिलान के पास 12-12 अंक हैं, 12 पॉइंट्स. कोमो के पास हैं 10 अंक. लाजियो के पास भी 10 अंक हैं. मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी वाले मैनचेस्टर डर्बी में सिटी के गोल को लेकर वा ऑफिशियल को कम से कम एक हफ्ते के लिए आराम करने को कहा गया है. इस वीकेंड के लिए उन्हें कोई प्रीमियर लीग मैच के लिए अपॉइंट नहीं किया गया. प्रोफेशनल रेफरी चीफ रेफरिंग ऑफिसर हावर्ड वेब और मैनेजमेंट टीम ने मैनचेस्टर डर्बी वाली घटना को लेकर यह फैसला लिया. एरर ऑफ जजमेंट की और भुगतना अब होगा, पर नुकसान तो यूनाइटेड को हुआ. मैच हार गए. आज और कल कराबाओ लीग कप के तीसरे राउंड के मैच खेले जाएंगे. लिवरपूल खेलेगा टोटनहम हॉटस्पर के खिलाफ. इप्सविच आर्सेनल, रेडिंग ब्रेंटफोर्ड, पीटरबोरो बर्नले, फिर वेस्टहम यूनाइटेड फुलहम. कल के मैच एवर्टन वुल्व्स, फ्लीटवुड टाउन शेफील्ड यूनाइटेड, कोवेंट्री एस्टन विला, मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्राइटन का स्वागत करेगा, और परसों मैनचेस्टर सिटी वर्सेस नॉर्विच सिटी. क्रिकेट, आज दूसरे T20 मैच की बारी है. टीम इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान. पहले मैच में भारतीय टीम की आसान जीत हुई थी. सभी मैच दिल्ली में खेले जा रहे हैं. घुड़दौड़ अनसंग हीरो मामले में मैनुअल नूनेस को 3 रेस मीटिंग के लिए सस्पेंड किया गया था और 30,000 जुर्माना. अपील के बाद अब सस्पेंशन 2 हफ्तों का हो गया है, मतलब अगली 2 रेस मीटिंग में मैनुअल नूनेस सवारी नहीं कर पाएगा. और किकबॉक्सिंग में 18 से 27 सितंबर तक इटली में वाको यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप लगने वाले हैं. मॉरिशस से माइल लुइस, वेन पेरिन और जादेन ड्राक वहां भाग लेंगे. दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. आई विल कैच यू अगेन कल सुबह. चलते चलते बता दें कि आज लीग कप यानी कराबाओ लीग कप के मैच, और बहुत लोगों का मानना है कि टोटनहम हॉटस्पर आज अपना पहला गोल स्कोर करेगा लिवरपूल के खिलाफ. टीम न्यूज में खबर है कि दोनों टीमों की ओर से कुछ नए खिलाड़ियों को लाए जा रहे हैं और नए खिलाड़ी लाए जा रहे हैं और कुछ खिलाड़ियों को आराम पे रखा जाएगा. जो होगा कल सुबह आपको रिजल्ट देंगे जरूर. टेक केयर, बाय बाय, और एक बार फिर गणपति बप्पा मोरिया.

0: म्यूजिक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि गलती करने के लिए कोई उम्र या फिर कोई सीमा नहीं होती है। गलती सबसे होती है, चाहे आपका उम्र आपकी उम्र कोई भी क्यों ना हो। कहते हैं ना कि गलती करना इंसान की फितरत में ही होती है। एंड ये अलग बात है कि जब आप गलती करते हैं तो इससे आपको ज़िंदगी की सीख लेनी है। एंड यू मे हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट रिपीट दैट सेम मिस्टेक अगेन। तो चलिए, यहाँ पर दैट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाना इन द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ अमित मिश्रा। एंड आई जस्ट होप दैट यू आर हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती। हमारे साथ दिव्या का साथ है टिल 7 PM इन योर म्यूजिक टकटकाटक। चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ और ब्यूटीफुल मैसेजेस की ओर। नमस्ते दिव्या जी, राधा जी, आप है कनाडा से, थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए। विशिंग अ पैस गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ अस एंड आरएम टू लिसनर्स, डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना टू ऑल द लिसनर्स। एंड आपको भी टेक केयर एंड होप टू सी यू सून। नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली आपके नाम, कहती है गणपति बाप्पा मोरिया, एक गाना गणेश भक्तों के लिए, आपके सभी परिवारों के लिए और रेडियो मस्ती टीम के नाम भी। वीना जगेसर जी, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। ओम श्री गणेश आय नमः फ्रॉम अफिया, बॉबी, अनीश, अमीशा, केविन, केविना, इष्टा, जयराज, बिकारी फैमिली ऑफ मोसन मोसैथों जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ। तो चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर। एंड ये जो अगला गाना है, ऑफ कोर्स हमें लेकर जाएगा टिल द इंग्लिश फ्लैश न्यूज़। इसके बाद एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात।
0: म्यूजिक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: आया रे ये दिल तुम पे आया रे कोई बात नहीं दिल के आते आते हम भी आ गए हैं एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात करने के लिए ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती शाम के 5:10 हो चुके हैं आवाज थोड़ा खराब है लेकिन कोई बात नहीं मूड को आप ऐसा बिल्कुल ना करें और साथ में अच्छे वाइब्स को बिल्कुल गले लगाएं एंड ऑफ कोर्स वी आर हियर टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड साथ में आपको यह साथ दिलाने के लिए भी कि ये आम छुट्टी का जो दिन होता है ना वो बहुत ही तेज रफ्तार से निकलता जाता है और कल तो बहुत सारे लोग विल बी रिज्यूमिंग योर वर्क बैक टू द डेली रूटीन और आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल गया है और कुछ लोगों के लिए इट वाज नॉट अ ब्रेक क्योंकि पूजा पाठ में इतनी जिम्मेदारियों के से आप घिरे हुए थे एंड आपको रेस्ट चाहिए होगा तो चलिए अभी के लिए आई गेस बहुत सारे लोग वापस आ चुके हैं घर आफ्टर द विसर्जन या फिर अगर आप अभी तक पूजा पाठ में लगे हुए हैं तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं एंड बोंकुहाज वैसे कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है तो गणपति बप्पा तो ज़रूर आपकी ये मेहनत देख रहे हैं और आगे चलकर इसका फल आपको ज़रूर देंगे सो चलिए दिव्या का साथ है टिल 7 PM इट्स योर म्यूजिक टकटकाटक ऐसे ही साथ देते रहिएगा
0: Music Taktakata
1: RM2 Radio Musti
0: RM2
1: Radio Musti
3: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड फोन नंबर 4128468 और केजी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी
4: एगो लास्योरेंस लावी कौन ची है जे काल कुछ तोहरा हो जाए तो ई तोहर और तोहर परिवार खातिर एगो सुरक्षा है पर जाने ला ई से तू एगो इन्वेस्टमेंट भी करे सकबा सिकम मैक्स इन्वेस्टमेंट ऐसन कई गो ऑप्शन बा जोन बहुत फ्लेक्सिबल बाटी तोहर महीना के पेमेंट के एगो हिस्सा तोहर लास्योरेंस लावी में जाए और दूसर हिस्सा तोहर पसंद के फोन में सकबा एवेस्टी करे जो निर्भर रही की आप कितना रिस्क ले सकबा नतीजा एगो ऐसन लास्योरेंस जोन तोहर परिवार के सुरक्षा करी और तोहर निवेश योजना में भी कामे आई सिकम के प्रस्तावित लाइफ इंश्योरेंस प्लान पर जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाइह इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
5: सिकम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
6: एनजू मबुआरोज मुलाकाज एनजू मबुफे

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: 5:24 हो चुके हैं। उदित नारायण एंड जलका याग्निक की आवाजों में ब्यूटीफुल सा ये गाना देखो देखो जानम हम दिल अपना लेके आए, जो भी खूबसूरत सा प्यार सा दिल लेके आए ना उनको हम अपने कहते हैं और आप तो हमारी अपनी से भी ज़्यादा अपनी हैं। थैंक यू सो मच इतने प्यार से साथ देने के लिए। एंड आम छुट्टी का दिन है टू ऑल दोज जो इस वक्त शायद घर लौट चुके हैं विसर्जन के बाद। इट्स टाइम टू सिट बैक एंड बस हमारे खूबसूरत गीतों को एंजॉय करने का टाइम आ चुका है।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है और हम भी कोशिश कर रही है टू कीप यू वेल एंटरटेन्ड टिल 7 PM. थैंक यू सो मच दिव्या का साथ देने के लिए ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. शाम के 5:35 होने को है एंड कुछ ही देर में फैशन टिप्स लेकर आएंगे आप लोगों के लिए. फिलहाल के लिए के की आवाज़ में एंजॉय दिस ब्यूटिफुल वन एंड इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी जन्नत.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: ऑलराइट, एज यूजुअल लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फैशन टिप्स। एंड आज हम बात करेंगे आपके कलर आउटफिट, यानी कि आपकी सारी आउटफिट के बारे में। जो आपकी साड़ियाँ होती हैं ना, वो कभी कभी जब आप ख़रीदते हैं तो ब्लाउज़ भी सेम कलर का हो जाता है, और अगर आप कंट्रास्ट कलर डालना चाहते हैं तो ऐसे में आपको हम बहुत ही खूबसूरत कलर्स प्रपोज करेंगे, और जिनको आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट टाइम कभी भी आप साड़ी डालकर इवेंट में जाएंगे, प्रेयर में जाएंगे, तो ये आपके काम आ सकता है। तो चलिए अभी के लिए तो हम बात करेंगे डस्टी पिंक साड़ी के बारे में। कभी भी अगर आपके पास कोई डस्टी पिंक कलर की साड़ी है तो इसको आपको मिक्स एंड मैच करना है फॉरेस्ट ग्रीन ब्लाउज के साथ। और कभी भी आपके पास फॉरेस्ट ग्रीन कलर की साड़ी है तो आप उसको मैच कर सकते हैं डस्टी पिंक ब्लाउज के साथ। इट नीड्स टू बी वाइस एंड वर्सा। तो अगर आपके पास सेज ग्रीन कलर की साड़ी है, ऐसे में आप वाइन रेड कलर का ब्लाउज इसके साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्लासी और अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम। नेवी कलर के साथ आप सिल्वर ग्रे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। मस्टर्ड कलर के लिए रस्ट ऑरेंज वाला ब्लाउज या फिर वाइस एंड वर्सा। और अगर आपके पास लाइलैक वाला कलर है तो आप इसको पर्पल कलर के साथ मैच कर सकते हैं। बेज साड़ी के साथ आप ब्लैक ब्लाउज को जरूर ट्राई करें, इट्स अ मस्ट एंड इट्स अ गो टू आउटफिट। एंड इसको ट्राई करेंगे तो आप इसमें बहुत ही जचेंगे, ट्रस्ट मी। एंड इट गिव्स अ वेरी क्लासी लुक एंड एट द सेम टाइम अ वेरी पीसफुल कलर आउट एट द सेम टाइम। और कभी भी कोरल पिंक वाली साड़ी है आपके पास तो ऑलिव ग्रीन के साथ आप इसको ज़रूर ट्राई करें। पिकॉक ब्लू के साथ गोल्डन येलो ज़रूर ट्राई करें। सो हमने आपको कुछ ऐसे कलर्स दिए हैं जिनकी साड़ी अगर आपके पास है तो आप इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं अलग अलग ब्लाउज के साथ, या फिर कभी कभी रेडीमेड ब्लाउजेस भी मिल जाते हैं तो आप इसके हिसाब से यू कैन एक्सक्लूड यूजिंग द सेम कलर वाला ब्लाउज, और आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर दिस ब्यूटीफुल कलर। और ट्रस्ट मी, जब आप कंट्रास्ट ब्लाउज डालते हैं ना साड़ी के साथ, इट लुक्स अमेजिंग, और आपका आउटफिट और आपका लुक भी खिल के सामने आता है।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
3: Music, Tactacata.
1: RM2, Radio Mustique.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: फ्रेंड्स, शाम के 5:55 होने को है और चलिए इसी गाने के बाद हम बढ़ने जा रहे हैं 6 बजे के समाचार बुलेटिन की ओर. हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से इन द नेक्स्ट आवर.

नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। आस्था, भक्ति और उल्लास से आज पूरा मॉरिशस गणेशमय है। घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद जगह जगह श्रद्धालु गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। भजन मंत्र और जय घोष के बीच हो रहा है आज विसर्जन। आज गणेश विसर्जन के दिन मॉरिशस के अलग अलग समंदर तटों पर नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमों की तैनाती रही। उन्होंने श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से धार्मिक विधियां पूरी करने में मार्गदर्शन दिया। जलाशयों के गिरते जलस्तर के बीच CWA ने पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तेज कर दी। नदियों के पानी को साफ करने के लिए मोबाइल यूनिट्स और बोरहोल्स का अधिक उपयोग किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, भारत में गणेश चतुर्थी पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। लगभग लालबाग राजा सहित देश भर की पूजा पंडालों और घरों में बड़ी संख्या में लोग विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। नमस्कार। आस्था, भक्ति और उल्लास से आज पूरा मॉरिशस गणेशमय बना हुआ है। घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद जगह जगह श्रद्धालु गणपति बप्पा को भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं। भजन मंत्र और जय घोष के बीच हो रहा है विसर्जन। यही संदेश देता है कि बप्पा का स्वरूप भले ही जल में समा जाए, उनका आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति सदा भक्तों के हृदय में बनी रहती है। आज बप्पा का साकार स्वरूप जल में विलीन हो रहा है, लेकिन भक्तों का विश्वास है कि उनका आशीर्वाद सदा जीवन में बना रहेगा। कल मंत्रोच्चारण के साथ जिन गणपति प्रतिमाओं की स्थापना की गई, आज उन्हें विधि विधान से विदाई दी जा रही है। मॉरिशस के कई इलाकों में सुबह से धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। अंतिम आरती के बाद श्रद्धालु बप्पा की प्रतिमाओं के साथ विसर्जन स्थलों की ओर बढ़ रहे हैं। सेंट फेलिक्स के मराठी विश्वनाथ मंदिर में सुबह श्रद्धालु गणेश पूजा के लिए एकत्र हुए। मंदिर में धार्मिक विधियां पूरी करने के बाद भक्त गणपति जी की प्रतिमाओं के साथ जुलूस में समंदर तट तक रवाना हुए और वहां विधि विधान से विसर्जन किया जा रहा है और बप्पा को अगले वर्ष फिर पधारने के आग्रह के साथ विदाई उन्हें दी जा रही है। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन की ओर से कल गणेशोत्सव का राष्ट्रीय आयोजन बॉशेरी स्थित ग्रांबोआ मराठी मंडली के श्री गणेश मंदिर में किया गया। आज पूजा अर्चना और आरती के बाद श्रद्धालुओं ने भक्ति और उल्लास के साथ विसर्जन यात्रा में भाग लिया। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन आवालोन में गुली नदी में किया जा रहा है और अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना के साथ भक्तों ने बप्पा को भावभीनी विदाई दी है। गणपति बप्पा की भक्ति में आज बेलमो में भी पूरी तरह सराबोर रहा मॉरिशस सनातन।

0: धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने वहां गणेश चतुर्थी का राष्ट्रीय आयोजन किया, जिसमें द्वीप के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूजा अर्चना, मंत्रों और भजनों के बीच प्रथम पूज्य भगवान गणेश का गुणगान किया गया। श्रद्धालुओं ने विघ्नहर्ता के चरणों में देश की सुख शांति, परिवारों की समृद्धि और सभी के मंगल की प्रार्थना की। कुणाल गोजी, गीता सरन।
1: गणेश चतुर्थी के लिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने आज बेलमो समुद्र में भावुक मन से बप्पा को विदाई दी। गणेश विसर्जन के अवसर पर भक्त ढोल नगारों और भक्ति गीतों के साथ गणपति की मूर्तियों को विसर्जन स्थल तक लाए। श्रद्धालु भगवान गणेश से सुख शांति समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। विसर्जन से पहले भक्तों की आंखों में खुशी के साथ साथ बप्पा से बिछड़ने का भाव भी नजर आता है। बप्पा की विशेष पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने विधि पूर्वक भगवान गणेश की प्रतिमाएं समुद्र में प्रवाहित किया। विधि विधान के साथ संकल्प किए गए दिन पूरे होने पर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्त बप्पा की प्रतिमा को घर लेकर आते हैं, उतने ही प्रेम और भाव विभोर होकर उन्हें विदा भी कर देते हैं। देश के पूर्वी इलाके के सभा संगठनों के सदस्यों और घर परिवार में जिन लोगों ने गणेश जी को अपने यहाँ स्थापित किया था, वे आज बेलमा समुद्र तट पर एकत्र हुए। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्न दूर करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर कैलाश लौट जाते हैं। गणेश विसर्जन हमें ये संदेश देता है कि जीवन में आने वाली हर चीज एक दिन विदा होती है, लेकिन आस्था और भक्ति हमेशा हमारे दिलों में बनी रहती हैं। भक्तों ने श्रद्धापूर्वक प्रतिमाओं को विसर्जित किया और गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया का जयकारा लगाया।
0: आज गणेश विसर्जन के दिन मॉरिशस के अलग अलग समुद्र तटों पर नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमों की तैनाती रही। मोशवाजी में भी अफसर पूरे समय स्थिति पर नजर रखते दिखे। उन्होंने श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से धार्मिक विधियां पूरी करने में मार्गदर्शन दिया और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी समंदर में अधिक गहराई तक न जाए। गणेश चतुर्थी पर्व का अंतिम और सबसे भावुक चरण है विसर्जन। इसका अर्थ केवल प्रतिमा को जल में समर्पित करना नहीं, बल्कि बप्पा को विदा करते हुए उनके आशीर्वाद को अपने मन में बनाए रखना भी है। विसर्जन से पहले उत्तर पूजा की जाती है। इस अंतिम पूजा के बाद गणपति जी की प्रतिमा को स्थापना स्थल से सम्मानपूर्वक उठाया जाता है और विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। पालमा में साधु और रामा परिवारों ने मिलकर पूरे विधि विधान से उत्तर पूजा की। इसके बाद परिवार के सदस्य गणपति जी की प्रतिमा के साथ विसर्जन जुलूस में शामिल हुए। कैंडी मोगा, यशना मिश्रा।
2: गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और इससे पहले उत्तर पूजा की जाती है। उत्तर पूजा भगवान गणेश की विदाई से पहले की जाने वाली विधि है। जिस स्थान पर वे कल से विराजमान हैं, वहां अंतिम बार उनकी भव्य आरती की गई। ये भावनाओं से भरा पल होता है। जब घंटों उनकी आराधना करने के बाद उन्हें विदा करने का समय आता है।
3: Le sentiment qui nous gagnait, la prière qui nous ferme, on trouve tout le monde content. J'étais dans un sourire dans cette figure quand j'étais allée, je dis à nous, mais c'est vrai, pas capable d'expliquer sa bénédiction, sa émotion de gagner ici, là, qui ça a vraiment fait nous chaud au cœur.
4: Nous bien contents sa fête là, un an, une fois elle est venue, nous tous enjoy ensemble.
5: Nous chanter, nous emmène Bappa. Que nous, même quand nous allons revenir, nous emmène Bappa bien avec respect.
2: इसके पश्चात उनकी मूर्ति को प्रांगण में ले जाकर वहां उनकी आरती उतारी गई। शिव पार्वती पुत्र गणेश ज्ञान के देवता हैं, वे विघ्न विनाशक कहलाए जाते हैं और प्रांगण में उनकी आरती उतार कर यही प्रार्थना की जाती है कि वहां कोई विघ्न न हो, सभी दुख दर्द मिट जाए।

0: सिर पर उनकी गद्दी चढ़ाकर अब उन्हें विसर्जन के लिए निकाला गया। जुलूस निकालकर बप्पा की जय जयकार की गई। बप्पा की मूर्ति को जिस प्रेम और भक्ति के साथ स्थापना के लिए सधु और रामा परिवार पाल्मा में अपने घर उन्हें लाए थे, अब उसी भाव के साथ उनका विसर्जन करने का समय भी आ गया है।
1: हर शुभ कार्य से पहले जिनका स्मरण किया जाता है वे हैं प्रथम पूज्य भगवान गणेश, कहीं गणपति कहीं गणेश तो कहीं विघ्न हर्ता के नाम से पूजे जाने वाले घरों और पूजा स्थलों में प्रवेश द्वार पर रक्षक के उनका ये अनोखा स्वरूप केवल एक धार्मिक छवि नहीं, उनका इसका प्रत्येक अंग जीवन की एक गहरी शिक्षा और आध्यात्मिक संदेश अपने भीतर समेटे हुए हैं। मंदिर कोविल और मंदिरों में अलग अलग रूपों में विराजमान भगवान गणेश के इन्हीं प्रतीकों की पूजा की जाती है। विस्तार गीता स्वर्ण के साथ।
2: अक्सर घरों और मंदिरों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किए जाने वाले गणेश जी मेहमानों और भक्तों का सबसे पहले स्वागत करते हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में हाथी के सिर वाले देवता गणेश जी का सबसे पहले स्मरण किया जाता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हर बाधा को दूर कर देता है। वे हमारे जीवन के हर नए अध्याय पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। पूजा स्थलों पर हर समारोह की शुरुआत में गणेश जी का नाम लिया जाता है, ताकि सभी पूजा विधि अच्छे से संपन्न हो। हिंदुओं के बीच गौरी पुत्र के नाम से प्रसिद्ध भगवान गणेश मंदिरों में शिव परिवार का हिस्सा है। वे भगवान शिव, माता पार्वती और मुर्गा के साथ विराजमान होते हैं।
3: गणेश से पार्वती माता,
2: भगवान गणेश पार्वती माता के पुत्र हैं। माता ने उनका आह्वान किया, अर्थात वे पहले से थे। वास्तव में आदि गणेश को हम पूजते हैं, हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसे जीवित करते हैं और फिर पूजते हैं। माता पार्वती ने यही किया था। कोविलों में गणेश जी की पूजा अन्य देवताओं विशेषकर आमेन और मुर्गा के साथ की जाती है। कुछ पूजा स्थल विशेष रूप से गणेश जी को समर्पित हैं। गणेश कोविल में गणेश जी भक्ति का केंद्र हैं। यहाँ होने वाले हर समारोह की अध्यक्षता गणेश जी ही करते हैं। इस कोविल में मुख्य रूप से भगवान गणेश ही हैं। यहीं पर गणेश चतुर्थी मनाते हैं। मॉरिशस में ये एकमात्र स्थल है जहाँ गणेश भगवान के लिए कोडी लगाते हैं, 10 दिनों के दौरान व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर गणेश चतुर्थी मनाते हैं। इसके बाद ध्वज नीचे लाते हैं। मंदिरम में गणेश जी मंदिर के प्रवेश द्वार पर विराजमान हैं। उनकी पूजा इस रूप में भी की जाती है कि वे भक्तों के लिए रास्ता खोलते हैं और उनकी आस्था और आध्यात्मिक खोज में साथ देते हैं। गणेश भगवान आदिपति हैं। जब शिव जी की पूजा करते हैं, सबसे पहले गणेश जी की आराधना करते हैं। वैष्णव संप्रदाय में उन्हें विश्व सेना के रूप में पूजते हैं। वे बुद्धि और ज्ञान के देवता भी हैं। अलग अलग मंदिर, परंपराएं और संस्कृतियां, लेकिन विघ्नहर्ता के प्रति भक्ति एक ही है। वे गणेश जी जो हर बाधा को दूर करते हैं।
1: और आरती की लौ, मोदक की मिठास और बप्पा के दर्शनों के लिए उमड़ा जनसैलाब। भारत में गणेशोत्सव ने आस्था, परंपरा और संस्कृति को एक सूत्र में बांध दिया है। लालबाग चौराहा के भव्य दरबार से लेकर घरों की शांत पूजा तक हर भक्त की एक ही प्रार्थना है, विघ्न दूर हो और जीवन में मंगल बना रहे। आस्था गोविंद।
4: भक्तों की लंबी कतारें, आंखों में अटूट श्रद्धा और होठों पर एक ही जय घोष, गणपति बप्पा मोरिया। लालबाग चौराहा के दरबार से उठी भक्ति की ये लहर पूरे भारत को गणेशमय कर रही है। कहीं शंख और घंटियों की पवित्र ध्वनि, कहीं मंत्रों का जाप, तो कहीं आरती की लौ में नतमस्तक श्रद्धालु। घरों और पंडालों में विराजे गणपति के सामने भक्त सुख, संपत्ति, शांति और मंगल की कामना कर रहे हैं। भगवान गणेश का स्वरूप अपने भीतर जीवन का गहरा संदेश समेटे हुए हैं। उनका विशाल मस्तक बड़ी और सकारात्मक सोच की प्रेरणा देता है। बड़े कान सबकी बात ध्यान

से सुनने का संदेश देते हैं, छोटी आंखें लक्ष्य पर एकाग्र रहने की सीख देती हैं। उनकी सूंड शक्ति और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रतीक है। गणपति का प्रिय मोदक ज्ञान से मिलने वाले आंतरिक आनंद का प्रतीक माना जाता है। वहीं उनके चरणों में बैठा छोटा सा मूषक मन की इच्छाओं और अहंकार को वश में रखने की प्रेरणा देता है।

0: रूप फिर प्रकृति में समा जाएगा, ये संदेश देते हुए कि रूप भले ही आंखों से ओझल हो जाए, ईश्वर की शक्ति और उनका आशीर्वाद सदा हमारे भीतर बना रहता है।
1: और स्थानीय स्तर पर लौटते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। मॉरिशस में पर्यावरण पर बढ़ता दबाव अब चिंता का विषय बन रहा है। देश में मौजूद प्राकृतिक संसाधन कितने समय तक हमारी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, इस पर यूनाइटेड नेशंस कंट्री टीम ने अपनी नए पॉलिसी ब्रीफ में सवाल उठाए हैं। बजट 2026-2027 के विश्लेषण पर आधारित इस रिपोर्ट में पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। चेतावनी दी गई है कि 2030 तक मॉरिशस को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। और जलाशयों में पानी लगातार कम हो रहा है, ऐसे में CWA अब नदियों और भूमिगत जलाशयों से पानी ज़्यादा पानी ले रहा है। नदियों के पानी को साफ करने के लिए मोबाइल ट्रीटमेंट यूनिट्स का इस्तेमाल भी किया गया है। कोशिश यही है कि जलाशयों में बचा पानी सुरक्षित रहे और दिसंबर तक लोगों को पानी मिलता रहे, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो पानी की कटौतियां और बढ़ाई जा सकती हैं। इस साल जनवरी से सितंबर महीने तक 193 नाबालिगों के लापता होने की शिकायतें पुलिस को मिली। इनमें अधिकतर मामले बच्चे के घर छोड़कर चले जाने से जुड़े रहे। राहत की बात यह है कि 181 बच्चों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया। ऐसे मामलों से बचने के लिए फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड माता पिता को बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देने और उनकी संगत के बारे में जानकारियां रखने की सलाह दे रही है।

आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 17 सितंबर तक सुबह 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी। मास्कारेंस के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज रात सेंट्रल प्लाटो और कुछ हवाई ढलानों पर रह रहकर बारिश हो सकती है। कल दिन के दौरान पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर बारिश जारी रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। और ऊंचाई वाली जगहों से बचने तथा क्रॉसविंड्स वाली जगहों पर गाड़ी चलाते हुए सावधानी बरतने की मांग की जाती है। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर कुछ इलाकों पर, कुछ तटीय इलाकों पर पड़ेगा और कुछ लगूनों पर भी पड़ेगा। इसलिए मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों तथा आम जनता से इन तटीय इलाकों और लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है, खासकर हाई टाइड के दौरान। तापमान 3 डिग्री से कम रहेगा। सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 21, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:05 पर सूर्योदय, शाम को 6:04 पर सूर्यास्त होगा।

देश विदेश की नई खबरों के साथ ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में युद्ध विक हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शोक समाचार।

स्ट्रीट सेचिया मिल थ्रियोले में प्रिंसेस आन स्ट्रीट सेचिया मिल थ्रियोले में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की मिसेस बीबी एसान शादुबकस मिसेस बीबी एसान शादुबकस पेदाशीना बतन जो बीबी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं. इनका जनाजा आज रात 8:15 बजे इनका जनाजा आज रात 8:15 बजे इनकी बेटी मिसेस तानोजिया एमा बकस की मकान प्रिंसेस आन स्ट्रीट सेचिया मिल थ्रियोले से उठाकर दफनाने के लिए कब मालोर का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुनाइट एट 8:50 PM. प्लाटो रोड गुडलैंड्स में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रोलमती बदाई पैदाशी नाम अलगू जो बड़ की मामा बदाई नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और हमारी सहयोगी निर्मला की माँ थी इनकी मृत्यु हो गई है. इनके अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके बेटे श्री विदेश बदाई के मकान प्लाटो रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो आफ्टरनून. ऑचोयम गली बुवालों में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देवीवंती बालोराम जो सोनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे के मकान ऑचोयम गली बोवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो में बकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM. डॉक्टर बेनेडिक रोड लेस्पेरांस पीतो में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड श्री प्रेम दत्त चरण जो प्रभु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है. कि अर्थी कल सुबह नौ बजे इनके बेटे श्री कवि चरण के मकान डॉक्टर बेनेडिक रोड लेस्वे हॉस्पिटल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोगुलेंस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 9 AM. महाराणा प्रताप रोड पे चिराफे में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जसमत सिचन पिताशी नाम भी से सर जो जयंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान महाराणा प्रताप रोड पिछे आफर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM. प्रिंसेस मार्गारेट लेन पेटिट रिवियर में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बिदाउती शांतो जो शांति बगमर नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं. कल दिन के साढ़े दस बजे इनके बेटे श्री किशन लाल बगमर के मकान प्रिंसेस मार्गारेट लेन पेटिट रिवियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सैं पियर बॉम्बो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो 10:30 AM. इबिस्क्यूस रोड लागोलत में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री बीकू इसराम जो गौसों नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं. इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री जोशन इसराम के मकान इबिस्क्यूस रोड लागोलत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियन वॉक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो 11 AM. क्रिमिशन रोड कांतोरल में 92 साल के 92 ईयर्स ओल्ड श्री धनपत गनोरी जो दीपलाल नाम से ज़रा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं. इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री सत्येंद्र गनोरी के मकान क्रिमिशन रोड कांतोरल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो 11 AM. शेनफील्ड रोड रिविया जोंपा में 93 साल के 93 ईयर्स ओल्ड श्री रामचंदर जोय चेकमैन से नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े तीन बजे इनकी पत्नी

श्रीमती कल्याणी जॉय के मकान शेनफील्ड रोड रिविया जो पौ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पंदिलास्को की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमशन टुमारो 3:30 PM।

0: बंतिया वाकवा में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रूमिला राम, श्रीमती रूमिला राम जो बड़ोश नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके भतीजे श्री भवेश राम के मकान बंतिया वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। तागोले इन एस्पेरेंस कोचे मिलिते अमी 40 साल की 40 ईयर्स ओल्ड श्रीमती वरुणा बर्ना पैदाशी नाम रघुनंदन जो वरुणा नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके ससुर श्री सुरुज बर्ना के मकान तागोले इन एस्पेरेंस कोचे मिलिते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अमरावती आदुंकली पैदाशी नाम का जाधर जो शीला नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे लाशा पेलौदौंत एलियंसन्स रॉयल रोड बोबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। रॉयल रोड बॉशेरी में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड श्री अजय देव सिंह गोपाल जो अजय नाम से ज़रा जाने जाते थे और बॉशेरी चाय कारखाने के पूर्व सरदार थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान रॉयल रोड बॉशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉशेरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। कादिया बाबा लेन लिस्कालिए में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चंद्रानी प्रेमचंद जो प्रतिमा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनकी माँ श्रीमती दमयंती प्रेमचंद के मकान कादिया बाबा लेन लिस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Music, Tuck Tuck Tuck. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: तुम मिले जाने मेरे दिल को क्या हुआ, हाय मुझे पता है आपके दिल को क्या हुआ, आपके दिल को प्यार हुआ है और आपको लगता है कि आपका दिल थोड़ा सा बेचैन है, बेताब है और बेचैन दिलों को चैन देने के लिए बस हमेशा आप उस शख्स के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली 100% आपको प्यार ही हुआ है। इट्स ऑलरेडी 6:33 एंड चलिए एक बार फिर से दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर हमारा और आपका साथ रहने वाला है 7 बजे तक ऐसे ही कुछ नॉन स्टॉप गीतों के साथ। एंड ऑफकोर्स वंस अगेन गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं टू ईच एंड एवरी वन सेलिब्रेटिंग। धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाया गया है, डोंट फॉरगेट, एक दिन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे साल में हमेशा भगवान को याद करते रहना है और बस यही प्रार्थना करते हैं कि गणपति बाप्पा आपके हर एक दुख को हर ले और आपके घर में सुख शांति समृद्धि रिद्धि सिद्धि साथ लेकर आए। और वैसे गणेश चतुर्थी इज़ वेरी वेरी सिंबोलिक, आप देखेंगे कि गणेश जी को घर में लेकर आते हैं 10 दिनों के लिए, 12 दिनों के लिए, इसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। इसका प्रतीत यही है कि ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जिनको आना होता है उनको जाना भी होता है और बस यही ज़िंदगी का नियम है और इस नियम के साथ हमेशा सबको चलते ही रहना है। और वैसे भगवद गीता में भी कहा गया है ना कि परिवर्तन संसार का नियम है और हर एक प्राणी इस नियम का पालन करना चाहिए। तो कभी भी आपके जीवन में कभी सुख आए कभी दुख आए तो कभी भी आप निराश ना हो और आप कभी भी दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट। अगर आपको लगता है कि सुख

0: परमानेंट नहीं है तो आपका दुख भी टेम्पररी है और ये बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी से निकल ही जाएगा। तो चलिए ऐसे ही हमारा साथ देते रहे हैं जद्दिव्या का साथ वंस अगेन टिल 7 PM इन योर म्यूजिक टक टका टक।
1: म्यूजिक टक टका टक। RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: ऑलराइट, 6:45 होने को हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ और ब्यूटीफुल मैसेजेस की ओर। हेलो लवली बहना, ललिता जीतन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड चलिए, यू आर एंजॉयिंग द माइंड ब्लोइंग शो विद गर्मा गर्म चाय। शायद आपकी गर्मा गर्म चाय की प्याली ख़त्म भी हो गई है, क्योंकि आपने मुझे ये मैसेज 5:16 को भेजा है। सो सॉरी, आपका मैसेज हमें थोड़ी देर से मिला। चलिए लगे हाथ, नेक्स्ट गाना गुजार फॉर कुमारी, सरोज, गीता, ज्ञानती, वीना, संजय, विजय, ललिता जीतन एंड कुमार देवी चनौव पेरेबिया। साथ में वी ऑलवेज वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना स्पेशली टू ऑल दोज जो इस वक्त सात समुद्र पार कनेक्टेड है हमारे साथ। थैंक यू सो मच आप लोगों को दिल से कि आप लोग आए दिन हमें याद करते रहते हैं। सो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर। डोंट फॉरगेट, वी आर टुगेदर टिल 7 PM।

Already 6:56 चलिए इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी बात संजय ऑल सेट हैं लेकर आ रही हैं आप लोगों के लिए इवनिंग लाउंज. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.

0: to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Mystique.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Mystique.
0: Radio Mystique.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Mystique.
4: 7 p.m.
5: वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
0: Evening Lounge.
6: RM2.
0: Radio Mystique.

0: गणपति बापा मोरिया पूछा वर्षी लोकरिया। अधिकतर जगहों पर अभी विसर्जन समाप्त भी हो चुका होगा। कुछ लोग इस समय घर लौट रहे होंगे, पैदल तो गए हुए होंगे लेकिन लौटने के लिए शायद सवारी में होंगे या तो पैदल ही लौट रहे होंगे। ये एक ऐसा अनुभव है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। सभी श्रोताओं को, रेडियो मसीह के सभी सुनने वालों को भाई संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम इन योर इवनिंग लाउंज।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: 2 रेडियो मस्ती
1: फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
2: जब ट्रेडिशन प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
3: रेडियो मस्ती
0: Evening Lounge
4: RM2
0: Radio Musti

0: to Radio Musti.
1: Fresh Flora Malini Fresh की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
2: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
3: Radio Musti
0: Evening Lounge
4: RM2
0: Radio Musti.

0: Evening Lounge, Evening Lounge,
1: RM2,
0: Radio Musti.
2: I suppose बहुत से हमारे listeners के लिए it has been a unique experience. ये इस साल का गणपति त्योहार वेव द वीकेंड और बीच में एक मंडे और फिर मंगलवार को एब्सोल्युटली स्टनिंग राइट फ्रॉम संडे फिर मंडे फिर कल रात आई सपोज बहुत सी जगहों पर इट वाज ट्रैफिक जाम इन मेनी प्लेसेस और आज की शाम भी बहुत से बीचेस पर बहुत से नदियों के नज़दीक में इट हैज़ बीन ए ट्रैफिक जाम और बहुत से लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ा बट इट वाज वर्थ इट जो एकता हमने देखा अमंगस्ट ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ मॉरिशियस एंड द फर्वर दैट वी

soar in the hearts of people, transcending their everyday lives, transcending their everyday grievances, and to unite for Bappa. Thank you, everyone. Everyone from the country for making this Ganesh Chaturthi 2026 a really memorable one. और शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए. ये मैसेज है दुर्गना पारू की ओर से, लिखती हैं विघ्न विनायक गजानन शुभकांक्षलु. मैसेज है दारण श्वेता रवीश पिशाल अभिषा की ओर से फरमोशनुआ. आपको भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं. द होल आपादू फैमिली. So keep on sending me your messages on 549-912-94.

0: 2 रेडियो मस्ती फ्रेश फ्लोरा मालिनी फ्रेश की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं।
1: जब ट्रेडिशन, प्योरिटी एंड बेहतरीन स्वाद हो साथ, हर सेलिब्रेशन बन जाए बेहद खास। जेन्स लिटिल इंडिया विशेस यू अ वेरी पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2
2: रेडियो मस्ती
0: Evening Lounge
3: RM2
0: Radio Musti

0: Evening Lounge, Evening Lounge,
1: RM2,
0: Radio Masti.
2: बन ठन के आज बहुत सारे लोग लड़के और लड़की भी प्रोसेशन में भाग लेने के लिए झाकरी डांस करने के लिए और जुलूस में भाग लेने के लिए भक्ति हाँ श्रद्धा हाँ पूजा पाठ हाँ लेकिन साथ ही साथ what a beautiful beautiful lively एकता की भावना से सुशोभित जुलूस देखने को मिले across the island and how beautiful it was to watch all these youngsters and elders as well and young kids also participating in the Visarjan ceremony and dancing together enjoying the presence of Bappa and everyone standing on the road and waiting patiently ki kab julus aayega aur kab ve bhi niharenge Bappa ko so that's beauty of Ganesh Chaturthi vaqai it feels like a blessing to be living in Mauritius jahan par itne sare tyoharon ko ek saath dekhne ka mauka milta hai thanks to all our ancestors our forefathers जिन्होंने इन सभी रीतियों को बनाए रखा

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं श्वेता हुकुम जी की ओर से फो मम सुया डैड लालदेव एंड द बिहारी फैमिली ऑफ कुंकुमा उनकी बेटियां रिद्धि सोनाक्षी और किड्स अवनी और वंश के लिए भेजती हैं लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ देम कमिंग फ्रॉम बप्पा

0: Loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: इस समय रात के 8 बज रहे हैं।
6: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
7: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Masti.
3: Namaskar, adab, and welcome in this second hour of Evening Lounge. A sweet hi to all those जिन्होंने आज काम किया और maybe बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कल भी काम किया होगा. Wishing you all bon courage. And for all those जिन्होंने family के संग ये दो दिन बिताए, together with Bappa, in the midst of all culture, belief, Shraddha, Bhakti, togetherness, sharing. And it is this, ye hai jo Mauritius mein jeene ka ek alag mahatva deta hai, jo aapko videsh mein nahi milega. Because family, culture, maa aur apna desh,

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: Yes, Radio Musti के लहरों पर Evening Lounge संजय के साथ. And as usual, आज की रात भी नेशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं on Radio Musti. और आज की रात भी उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है with a quotation from Rumi. जिसमें अर्ज किया गया है कि paradise has not been fashioned out of materials. It has been fashioned out of good deeds and intentions. Beautiful. Beautiful, Anashin ji, thank you for this beautiful message of yours. ये मैसेज है राधा जी की ओर से फ्रॉम कनाडा लिखती हैं लवली प्लेलिस्ट एज यूजुअल प्लीज प्ले अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर माय लव्ड वन इन कनाडा मॉरिशियस फॉर योरसेल्फ एंड फॉर ऑल RM2 लिसनर्स लिखती हैं गणपति बप्पा मोरेया अगले बरस तू जल्दी आ

0: इवनिंग लाउंज
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: इस समय मुशिस में रात के 8:30 बज चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू इवनिंग लाउंज संजय के साथ ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। काफी मैसेजेस विदेश से आए हैं expressing how much they miss their motherland on this special occasion of Ganesh Chaturthi. ये सच है कि जब ऐसे ही मौके आते हैं तभी घर की सबसे ज्यादा याद आती है. And you recall the days when the whole family would unite together to celebrate Chaturthi. किस तरह से स्थापना की जाती है और सभी लोग आकर उसमें भाग लेते हैं. All the neighbors coming together, helping in the decoration, helping in the sthapna. Everyone coming in, singing, dancing the jhakri together.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Masti.
2: Evening Lounge ये प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होने को चला. आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया आपने साथ निभाया. जितने भी लोग इस समय काम पर हैं आप सबों को बॉन कुराज. जितने भी लोग एक लॉन्ग वीकेंड के बाद कल रिज्यूम करने वाले हैं हैव ए नाइस स्टार्ट ऑफ द वीक टुमारो. अन्यथा हमारी आपकी अगली मुलाकात रेडियो मस्ती के लहरों पर होगी नेक्स्ट सैटरडे. तब तक अपना ख्याल रखें और हमें आज्ञा दें. धन्यवाद. नमस्कार. शुभ रात्रि. शब्बा खैर. हमारे बाद वेदिता आ रही हैं आपका साथ निभाने. बप्पा की कृपा आप सब पर बनी रहे.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

पापा मोरिया सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं जानती हूँ कि अभी आपका मन थोड़ा सा दुखी है क्योंकि आपने बप्पा को अपने घर पे इतने दिनों तक रखा और आज विसर्जन करने के बाद बहुत सारी आंखें हैं जो नम हो जाती हैं। तो मैं विदिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जो कि है लेट नाइट ग्रूव्स। आज का दिन भक्ति श्रद्धा खुशियों से भरा हुआ है और गणेश चतुर्थी मना रहे हैं हम सभी। भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं वो इसलिए क्योंकि वो हमारे जीवन से सारी बाधाओं को परेशानियों को दूर करते हैं। तो बप्पा से प्रार्थना है कि बप्पा आप आए विराजे, हमने पूजा प्रार्थना की, भजन कीर्तन गाए, अब जाते जाते हमारे जीवन से सारे दुख ले जाओ और हमारे जीवन में खुशियां भर दो। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम लेट नाइट ग्रूव्स को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। कैसे

श्रोताओं, गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि बप्पा के साथ जो हमारा दिल का रिश्ता होता है ना, उसको और भी खूबसूरत बनाने का एक मौका होता है, उनसे जुड़ने का एक मौका होता है, उनकी सेवा करने का मौका होता है और उनके जो ऊर्जा है, जो कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी, वो ऊर्जा हमें अपने घर में चारों ओर फैलाना होता है। इसीलिए तो हम बप्पा को अपने घर में लेकर आते हैं ताकि उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है हमारे घर से सारी परेशानियां दूर कर दे। तो एक बार फिर गणपति बप्पा मोरे, आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

तो प्रिय श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स विदिता के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि बप्पा जो है आपको जाते जाते खुश करते हुए जा रहे हैं। वैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी बप्पा जो है, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग आज विसर्जन कर दिया तो फिर उनकी पूजा प्रार्थना ना करें, हम रोज़ कर सकते हैं, क्योंकि बप्पा ही हैं जो विघ्न हरता है, बप्पा ही हैं जो हमारे जीवन में बस सुख शांति लेकर आते हैं। तो आपके मन में अगर कोई सवाल है, अगर आपके मन में कोई भी परेशानी है, आप दुखी हो, बप्पा का नाम एक बार प्रेम से, पूरी श्रद्धा भक्ति से ले लो और फिर देखो जीवन में कैसे चमत्कार आता है।

0: लेट नाइट ग्रुप्स में मैं विनीता आपका साथ दे रही हूँ और आपके लिए हम आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं जो कि खास गणेश चतुर्थी के मौके पे हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ पे हर तरह के गाने के साथ हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं। साथ देते रहिए और हमारे गाने एंजॉय करते रहिए।
1: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन।

शुभेच्छा मंगलमय शुभेच्छा। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आप सबों को। चलिए आज के दिन हम गणपति बप्पा से एक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए जो आज विपत्ति में हैं, जो आज परेशानी में हैं, जिनके जीवन में उनको लगता है बस दुख ही दुख है और उनको कुछ जो कहते हैं ना कि उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है। तो आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि कोई भी दुखी हो, कोई भी परेशान हो, अगर आज आप उनके लिए प्रार्थना करें थोड़ा सा, तो हो सकता है कि गणपति आपकी आवाज़ सुन ले, आपकी प्रार्थना सुन ले और उन लोगों के जीवन से दुखों को दूर कर दे। गणपति सिर्फ जीवन से दुख दूर नहीं करते बल्कि वे हमें इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि वक्त आने पर हम अपनी परेशानियों के साथ खुद लड़ लें। और चलिए, हमें तो हिम्मत की ज़रूरत होती है, तो हिम्मत आपको मिले, और जिनको फैसला लेना है तो उनको विवेक मिले। बुद्धि बलना बहुत ज़रूरी होता है, तो ज्ञान के देवता गणपति आपको

माय डियर फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग टू लेट नाइट ग्रूव्स वेदिता के साथ ऑन रेडियो मस्ती। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। आज तो पूरे दिन आपने छुट्टी ही मना ली, क्योंकि आज छुट्टी

का दिन था और अभी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत सारी जगहों पे अभी भी बप्पा का नाम ले रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो ऐसे ही आप बप्पा का नाम लेते रहिए और अपने जीवन में खुशियाँ भरते रहिए।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

चलो जी, आज तो हम बप्पा से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो भी चल रहा है, जो तूफान चल रहा है, उसको थाम ले, हमारे जीवन से विघ्न को दूर करें। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, वो पेशेंस वो गणपति हमें दे, वो ताकत गणपति हमें दे, और मुश्किलों का साथ सामना करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, वो हमें बप्पा ज़रूर दे। तो चलिए, कुछ भी हो, बप्पा का नाम लेते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो।

रेडियो मस्ती पर आप विदिता का साथ दे रहे हैं और बप्पा के चरणों में भी हमारा प्रणाम है। चलिए तो यहाँ आपके लिए हम लेकर आए हैं लेट नाइट ग्रूव्स। उम्मीद करती हूँ हमारे गाने आप पसंद कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, इसी के चलते भाई मैं तो ढूंढ रही थी कि कहीं से कोई मोदक मिल जाए। मोदक जो है वो गणपति को बहुत बहुत बहुत प्रिय है, उनका प्रिय भोग माना जाता है और गणेश जी और मोदक का बहुत ही एक रिश्ता है, जैसे बहुत खास है। तो ऐसे है ना कि मोदक की असली मिठास सिर्फ उसके स्वाद में नहीं बल्कि उस भावना में है जिसके साथ हम उस बप्पा को अर्पण करते हैं। तो अगर आप लोग भी बप्पा को मोदक चढ़ा रहे हैं तो चलिए हमारी ओर से एक दो मोदक आप भी खाइए।

0: MPC-च्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. MPC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. MPC wishes you all a pious गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

पता है कभी कभी हम सोचते हैं कि जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है ना, तो वही परेशानियां हमें और भी परेशान करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता, एवरी ऑब्स्टिकल इज नॉट एन ऑब्स्टिकल, ये हम भी मानते हैं। और हमें पता है कि जब भी कोई परेशानी आती है वो आपको और भी स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं। उसी तरह से जब बप्पा आते हैं ना, तो अपने साथ कई सारी मुसीबतें लेकर आते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप उन मुसीबतों का सामना करते हैं। अगर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गणपति पे भरोसा करते हैं, लेकिन अगर आप हार मान जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये तो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो गणपति का भक्त होता है ना, वो कोई भी तूफान आए खड़ा रहता है, सामना करता है और आगे चल के जीत जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम लेट नाइट ग्रुप्स को आगे बढ़ाएंगे। गणपति बप्पा मोरया।

दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे इस कार्यक्रम को आपने पसंद किया होगा। इसी के साथ मेरे जाने का टाइम हो गया है, अब आपसे मुलाकात करूंगी मैं बहुत जल्द एक और कार्यक्रम के साथ। अभी के लिए आज्ञा दीजिए और इसी के साथ हम आपको कहेंगे शुभ रात्रि, नमस्कार।